ओमेगा हर्ट्स पर ए तुम्हारा सारे दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तुम्हारा दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओं कर दे अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते कन्ने, तुम्हारा सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

कुंचन धर्मशाला गणेश होता तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो कुंचन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या।
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
14: ले जाए पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
17: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
16: हाँ बोलो।
17: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
16: अभी बताती हूँ। बेबी टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
17: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
18: गजब बेइज्जती है।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या?
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, UPI से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, UPI से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: UPI पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
14: तुम क्या खड़ा?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
15: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
17: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
18: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
17: हाँ बोलो।
18: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
17: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
18: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
13: गजब बेइज्जती है।

दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि जियो तो जन्नत नहीं तो शमशान है ये जिंदगी। हर चेहरे पर खेलती एक मुस्कान सी है ये जिंदगी। कभी तो खुशियों की महफिल है ये जिंदगी और कभी कभी बहुत सुनसान सी है ये जिंदगी। कभी खिली धूप सी तो कभी रिमझिम बारिश और कभी एक भयंकर तूफान है ये जिंदगी। यारों का साथ है जिंदगी में तो क्या बात है, बिन यारों के तो जैसे वीरान है ये जिंदगी। मेरी नादानियों पे तो ये गौर करती है बहुत, अपनी बदसलूकी से अनजान है ये जिंदगी।

है ये जिंदगी, जियो तो जन्नत नहीं तो शमशान है ये जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, और बहुत ही प्यारे से शब्दों के साथ और बहुत ही प्यारे से विचारों के साथ शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम की। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बरसात भरी बातों के साथ। तो उम्मीद है आज की सुबह आप सभी की बहुत अच्छी रही है दोस्तों, चिलचिलाती धूप के साथ और साथ ही अपनी रूटीन के साथ। अब दिन के शुरुआत को बनाइए प्यारा, खूबसूरत और यादगार। हर एक पल को संजो लीजिए अपनी इन यादों में। 23 जून 2026 का दिन, आज मंगलवार का दिन। जी दोस्तों, तो आइए इसी प्यारी सी खूबसूरत सी शुरुआत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ढेर सारा रहस्य कार्यक्रम का आप सभी तक पहुंचेगा धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए आप सभी ने कहीं जाना भी है तो बस फोन या फिर छोटा सा रेडियो सेट भी होता ही है, तो उसे आप अपने साथ में रखिए और अपनी काम भी करते रहिए और इंजॉय भी करते रहिए और जानते रहिए कि क्या क्या खास आज के कार्यक्रम में रहने वाला है। तो देर किस बात की है, मनोरंजन का तड़का लगा ही देते हैं। जी दोस्तों, आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा पहला गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों सोनू निगम सुनिधि चौहान की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, जिसके साथ कार्यक्रम में मनोरंजन की शुरुआत हो चुकी है। जी दोस्तों, और इस प्यारे से गीत के साथ आप सभी को लेकर चलते हैं मौसम की ओर। तो मौसम का रुख आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बहुत ही ऐसे ना मतलब चुभने वाली सी धूप जो है वो सुबह सुबह ही दस्तक दे चुकी है, और मौसम का भी कोई हम ना अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब ज़रूरत होती है बारिश की तब होती नहीं है, और जब नहीं ज़रूरत होती है तब खूब सारी बारिश होती है ना। तो बात करें अब खेती की, तो अभी ज़रूरत है हमें पानी की, है ना, तो बारिश की ज़रूरत है। लेकिन अभी बहुत ही ऐसे प्यारी सी नहीं बोल सकते, बहुत ही तीखी सी धूप जो है वो हमारे सामने है सुबह सुबह ही। तो ऐसे में काम करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल तो खैर किसकी ज़िंदगी में नहीं होते, ये तो दुनिया ही मुश्किलों से भरी हुई है। लेकिन मुश्किलों का सामना करना, हमें वो जुनून, हमें वो लगन होना भी ज़रूरी है। खैर मौसम का मिजाज है दोस्तों, अपने मर्जी के हिसाब से चलेगा, जैसा मन करेगा उसी हिसाब से आपका साथ देगा। खैर सभी के ध्यान जो है वो ज़रूर होता है मौसम को समय समय के हिसाब से। तो समय तो है मानसून की दस्तक का, लेकिन अभी तक कोई ऐसे आसार लग नहीं रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से आगे की ओर बढ़ता है और आगे हमें किस तरह से साथ देता है ना। तो फिलहाल दोस्तों धर्मशाला के तापमान की हम बात करें तो इस समय आप सभी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इस समय धर्मशाला का तापमान है। और मौसम विभाग के अनुसार अगर हम थोड़ा सा सतर्कता की ओर चलें तो दोस्तों विज्ञान केंद्र शिमला ने 26 जून तक राज्य के कई जिलों में आंधी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 27 और 28 जून को भी पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। और अगर हम आज की बात करें

यूं कहें कि कानों तक जो है वो पहुंच रही है रेडियो गुंजन धर्मशाला की ये प्यारी प्यारी सी बातें। जी दोस्तों, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और चलते हैं प्यारे प्यारे से गीत संगीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने रेडियो सेट पर, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और खास करके अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से। जी दोस्तों, तो आइए इसी गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं आज के दिन की कुछ खास बातों की। दोस्तों, क्या खास बात है आज के दिन की? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हर दिन का जो है इतिहास में एक अहम रोल रहता है ना, खासियत रहती है। तो उन इतिहास के पन्नों को पलटना कई बार, रोज नहीं तो कई बार तो हमें जरूर पलटना चाहिए।

0: शायद उन बातों से हम अपनी जिंदगी में कोई नया मोड़ लेकर आ सकें, एक नई दिशा दे सकें, या यूं कहें कि कहीं अगर हम भटक रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर नजर दौड़ाएं। क्योंकि पहले जिंदगियों में इतना संघर्ष रहता था, इतनी परेशानियां रहती थी, लेकिन फिर भी लोग अपने सपनों के लिए कभी पीछे नहीं हटते थे, उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देते थे, चाहे वो किसी से लड़ें, चाहे किसी से झगड़ें, लेकिन हाँ, अपनी एक पहचान वो ज़रूर बनाते थे। तभी तो वो इतिहास के पन्नों में आज हमारे सामने हैं, अपनी एक पहचान बना कर गए हैं और हम उनको याद करते हैं और उसी तौर पे हर दिन को खास बनाते हैं। तो ज़रूर दोस्तों, ये जो पेशेंस हैं जो कहीं ना कहीं आज के समय में कम होते जा रहे हैं, खास करके बच्चों में, युवाओं में, तो ये बहुत ज़रूरी है। जब तक पेशेंस नहीं है हम में, शायद हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज का दिन बेहद खास है दोस्तों, क्योंकि आज के दिन आप सभी ओलंपिक डे मना रहे हैं। तो खेलों का क्या महत्व हमारी ज़िंदगी में है, ये कहना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि खेलें हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल निभाती हैं। तो ज़रूर जानेंगे, ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह से निभाती हैं, किस तरह से ये हमें आगे की ओर लेकर जाती हैं, तो ज़रूर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, 9:20 हो चुके हैं और अब समय है रुचिका को अपनी बातों को थोड़ा सा ब्रेक देने का, क्योंकि हमें चलना है प्रादेशिक समाचारों की ओर। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अपने आसपास की कुछ खास जानकारियां, उसके बाद फिर से आप सभी की मुलाकात होगी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।
1: इस वर्ष 3,336 करोड़ की लागत की 19 जल विद्युत परियोजनाएं हस्ताक्षर। 1 जनवरी 2016 के पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को जुलाई में जारी की जाएगी एरियर की बकाया राशि। मंडी स्थित मिल्क फैक्ट्री चक्कर इकाई की बढ़ाई जाएगी क्षमता। प्लांट में अतिरिक्त पॉस्चराइजर होगा स्थापित। और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 93वीं जयंती आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में दी जा रही है श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। पद्म अलंकरण देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राज्य सरकार ने इस वर्ष लगभग 3,336 करोड़ रुपए की लागत से 278 मेगावाट क्षमता की 19 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन समझौते हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के प्रयासों को सराहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता 24,000 मेगावाट है, जिसमें से 12,588 मेगावाट क्षमता की 189 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 1,528 मेगावाट क्षमता की 54 परियोजनाएं निर्माणाधीन है तथा 7,500 मेगावाट क्षमता की 526 परियोजनाएं स्वीकृति के विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी दरों को 40 वर्षों के लिए 12% कर दिया है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड की मंडी स्थित चक्कर इकाई में बढ़ते दुग्ध संग्रहण को देखते हुए प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में प्लांट की क्षमता 50,000 लीटर प्रतिदिन है, जबकि यहां करीब 1,00,000 लीटर दूध प्रतिदिन पहुंच रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: मंडी जिला के मिल्कफेड की चक्कर इकाई में बढ़ते दुग्ध संग्रहण को देखते हुए प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इकाई प्रभारी विश्वकांत शर्मा ने बताया कि वर्तमान में 1,00,000 लीटर दूध प्रतिदिन पहुंच रहा है। इसी बढ़ते दबाव को देखते हुए प्लांट में एक अतिरिक्त पॉस्चराइजर स्थापित किया गया है और रेफ्रिजरेशन क्षमता बढ़ाने का कार्य भी जारी है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद प्लांट की क्षमता बढ़कर लगभग 1,50,000 लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन के प्रति किसानों का रुझान लगातार बढ़ा है। जनवरी 2023 में लगभग 9000 दुग्ध उत्पादक जुड़े थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 21000 से अधिक हो गई है। दुग्ध उत्पादकों को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मई माह के लिए लगभग 15,70,00,000 रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है और जल्द ही भुगतान की पूरी प्रक्रिया डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीष सूद।
1: प्रदेश में पहली जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी सरकारी और पारिवारिक पेंशनरों को उनकी बची हुई एरियर राशि जुलाई 2026 में जारी कर दी जाएगी। वित्त विभाग से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2016 से पहले के सभी पेंशन धारकों के एरियर का बकाया भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा लंबित पेंशन एरियर के चरणबद्ध भुगतान की प्रक्रिया के तहत लिया गया है, जिससे हजारों पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार 15 मई 2003 से पहले वर्क चार्ज स्टेटस पाने वाले कर्मचारी भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे। अदालत ने वित्त विभाग की ओर से पेंशन रोकने के वर्ष 2019 के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं की CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार लगातार प्रदेश में झूठा प्रचार करती रही है और केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव का आरोप लगाती रही है, जबकि केंद्र सरकार प्रदेश को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है। हर्ष महाजन ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के एक आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को पिछले 3 वर्षों में करोड़ों रुपयों की केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में 486 करोड़, वर्ष 24-25 में 526 करोड़ और वर्ष 25-26 में 676 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों में प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1963 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है। हर्ष महाजन ने सवाल उठाया है कि जब केंद्र सरकार लगातार धन उपलब्ध करवा रही है तो प्रदेश में विकास कार्य अपेक्षित गति से क्यों नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज 93वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को याद किया जा रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई गणमान्य लोग आज रिज मैदान स्थित वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए वीरभद्र सिंह फाउंडेशन द्वारा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें रक्तदान शिविर, अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण कार्यक्रम सहित रिज मैदान पर इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप शामिल है। राज्य में हरित आवरण में वृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना के अंतर्गत वन विभाग कुल्लू ने 2 निजी संस्थाओं के साथ MOU साइन किया है। जायका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक डॉक्टर संजय सूद ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाएं वन विभाग द्वारा चिन्हित वन क्षेत्रों को गोद लेकर पौधारोपण, इको रेस्टोरेशन तथा उनके रखरखाव का करेगी। प्रदेश की ऊंची चोटियों में कल हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू और चंबा जिला के निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। चंबा जिला की ऊंची चोटियों सहित रोहतांग दर्रा में बर्फबारी से जनजातीय इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ लाहौल स्पीति से हमारे संवाददाता।
3: जनजाति जिला लाहौल स्पीति में इन दिनों मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है। पिछले कल खराब मौसम के चलते जिले में दिन भर रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। वहीं रोहतांग दर्रा, बारालाचा, लाश, शिंगुला सहित जिले के सभी ऊंचे चोटियों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरे जिले में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को जून के महीने में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। जहां देश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं लाहौल स्पीति का मौसम ठंडा और सुहावना बना हुआ है। हालांकि ये मौसम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन किसानों और बागवानों की चिंता को भी बढ़ा रहा है। लगातार बादल और कम धूप के कारण फसलों के पकने की रफ्तार प्रभावित हो रही है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: वहीं राजधानी शिमला सहित अधिकतर क्षेत्रों में आज धूप खिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले चार दिनों तक राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान चोटियों पर हल्की बर्फबारी के भी आसार बने हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, एचआरटीसी कर्मियों को राहत, मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ जारी। बागवानी विभाग में भरे जाएंगे 450 पद, शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, सेब बागवानों को मिलेगी बेहतर तकनीकी सहायता। पंजाब केसरी की एक खबर है, हिम केयर योजना का दायरा बढ़ा, अब 10 लाख तक स्वास्थ्य कवर। हिमाचल के 37 दवा उद्योगों में बनी 44 दवाएं जांच में फेल, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह से लेकर गैस्ट्रिक रोगों की दवाइयों के साथ 4 सिरप भी शामिल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इस वर्ष 3,336 करोड़ की लागत की 19 जल विद्युत परियोजनाएं हुई हस्ताक्षरित। पहली जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को जुलाई में जारी की जाएगी एरियर की बकाया राशि। मंडी स्थित मिल्क फैड की चक्कर इकाई की बढ़ाई जाएगी क्षमता, प्लांट में अतिरिक्त पाश्चराइजर होगा स्थापित। और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की 93वीं जयंती आज, प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में दी जा रही श्रद्धांजलि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, समाचारों और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। ट्यून किया है आप सभी ने समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, तो बातचीत शुरू करने से पहले आइए लेकर चलते हैं आप सभी को मनोरंजन की, और इसके बाद अभी ढेर सारी बातें, कुछ खास बातें आप सभी तक पहुंचना बाकी है, तो थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद पूरा रहस्य आप सभी के सामने।

दोस्तों फिजा मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत उदित नारायण अलका याग्निक के आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कुछ बातें जो कि हमसे जुड़ी हमारी जिंदगी से जुड़ी। दोस्तों इस संसार में लोग आपसे एहसान भी लेंगे और फिर आपको ही मतलब ही भी कहेंगे। ये दुनिया की प्रकृति है, जो जितना सहता है लोग उसी को सबसे अधिक कठोर परीक्षा में डालते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्मों को सत्य और आत्मसम्मान के साथ निभाइए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी से बदले की अपेक्षा मत रखिए। कुछ भी स्थायी नहीं रहता दोस्तों, ना समय, ना लोग और ना ही परिस्थितियां। जो आज आपके साथ है वो कल बदल सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपकी सच्चाई और आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है। कितना जीना है ये हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है ये पूरी तरह से हमारे हाथों में। जी दोस्तों, ये बहुत ही कहते हैं ना कि कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें, तो यहीं से निकलती हैं ये बड़ी बड़ी सी बातें। अक्सर हम क्या करते हैं, कोई हमारे साथ गलत करे तो हम बदले की भावना रख लेते हैं और हम सोचते हैं कि जैसा किसी ने हमारे साथ किया हम वैसे ही उनके साथ करें। हमें जितना दुख पहुंचा उससे कई ज्यादा हम उन्हें दुख पहुंचाएं, उन्हें परेशान करें। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि माफ करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा इंसान होता है। तो जिंदगी में हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, ना कि एक दूसरे की ताका झांकी पे। और आजकल आप सभी ने देखा होगा कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद का तो पता नहीं, खुद का छोड़िए खुद के घर का तक पता नहीं कि खुद के घर में क्या चल रहा है, लेकिन दूसरों के घरों में क्या चल रहा है, दूसरे के घरों में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या क्या बातें चल रही हैं, वो जानना या वो उन्हें सब पता होता है। तो भाई आपको दूसरों के घरों से क्या लेना है, अपना घर संभालिए। और सच बात कहूं दोस्तों, कुछ लोगों को तो ना अपने घर में भी हेल्प का एक कहते हैं कि 1% भी योगदान नहीं होता है। कुछ संभालने की बात आए तो बस आफत आ जाती है। तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। और यही कहूंगी कि सबसे पहले खुद का देखिए, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचिएगा। हाँ, अच्छा कर सकते हो तो जरूर कीजिए, लेकिन ये जो बेफिजूल में खुद भी परेशान होना, दूसरों को भी परेशान करना, तो ये बहुत गलत बात होती है शायद। और कुछ लोग मीठे बनकर जो ये चीजें करते हैं ना, उनसे हमेशा दूर रहिए या उनकी बातें एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। ये जिंदगी का मंत्र है और इस मंत्र को जिस जिस ने अपना लिया ना दोस्तों, समझ लीजिए वो जिंदगी में कामयाब है। फिलहाल आइए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि ये रुचिका की बातें कभी खत्म नहीं होंगी और जिंदगी से जुड़ी बातें जो कि सच्चाई की ओर लेकर जाती हैं। कड़वी जरूर लगती हैं और कड़वी उन्हीं को लगती हैं जो असल में गलत होते हैं। तो आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ते चलिए, किसी को क्या लगता है, कोई क्या सोचता है, वो उन्हें सोचने दीजिए। उनके बदले का काम आप क्यों करें, अपनी एनर्जी आप खुद क्यों वेस्ट करें। तो उन्हें लगे रहने दीजिए और आप अपने कर्म जो है वो करते जाइए। तो फिलहाल हम भी कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है दोस्तों 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और अपनी डेली की रूटीन, पूरे दिन का जो भी आपका शेड्यूल है उसे आप सभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ और इन प्यारे प्यारे से जानकारियों के साथ, बातों के साथ और साथ ही साथ गीत संगीत के साथ। तो दोस्तों जैसे कि हर दिन कुछ खास रहता है, वैसे तो हमें हर पल खास बनाना चाहिए क्योंकि अगले पल क्या हो क्या ना हो कोई नहीं जानता। तो आज के दिन की हम बात करें तो 23 जून 2026 का दिन दोस्तों आज आप सभी मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। एक वैश्विक आयोजन है जो खेलों को बढ़ावा देता है और दुनिया भर के लोगों के बीच एकता को मजबूत करता है। जो एकता कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वीक होती हुई नजर आ रही है, टूटती हुई नजर आ रही है, तो उसे मजबूत करने के उद्देश्य से आज का ये दिन आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर साल मनाया जाने वाला ये दिन खेल भावना की एकजुटता को समर्पित है, जहां सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोग ओलंपिक भावना का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। इसलिए जो है दोस्तों इन खेलों में हमारी फिजिकल जो एक्टिविटीज रहती हैं फिजिकली, तो हम फिजिकली तो फिट रहते हैं लेकिन मेंटली भी हम कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहते हैं। आज की डेट में अगर आज के समय में हम देखें तो कहीं ना कहीं हम किताबों को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, या यूं कहें कि सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाई सबके सामने नज़र आती है, चाहे वो आप मेडिकल फील्ड्स में बात करें या फिर आप नॉन मेडिकल की फील्ड की बात करें या फिर मतलब बहुत सारी ऐसी बातें, तो ये जो छोटी छोटी सी बातें, चाहे वो फिर खेल हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, क्योंकि हर इंसान का शौक जो है वो अलग अलग होता है। किसी को गाना गाने का शौक है, किसी को खेलने का शौक है, जुनून है उनमें, तो किसी को लिखने का शौक है। लेकिन बच्चे प्रेशर में आके, या यूं कहें कि दुनिया की इस भाग दौड़ में एक दूसरे को देखकर इमेज के चक्कर में अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं, या यूं कह सकते हैं आप कि उन्हें खोना पड़ता है अपने सपनों को। अपने सपनों की कीमत उन्हें इस दिखावे से चुकानी पड़ती है। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जब आप उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, जब आप उनकी रुचियों को नहीं समझेंगे, आप उनके इंटरेस्ट को नहीं समझेंगे, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। माना कि आपके बच्चे को आर्ट्स फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा उसमें उनकी कमांड है, लेकिन आपके घर में ही आपके भाई के बच्चों ने मेडिकल रखा है, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपनी ईगो पे वो सवाल सा खड़ा हुआ दिखता है कि नहीं भाई, हमारे बच्चे क्यों आर्ट्स पढ़े। प्रेशर में आके उन्हें भी आपने साइंस रखा दी, लेकिन बच्चा वो पढ़ नहीं पाया, वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, वो खुद को प्रेशराइज कर रहा है, वो खुद को स्ट्रेस की ओर लेकर, क्योंकि उसे टेंशन हो रही है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हो पाया तो भी क्या सवाल होंगे मेरे आगे, मैं कैसे जवाब दूँ। तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ये सब बातें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं और बच्चों की खुशियों को दबा देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, फिर वो ना अपना शौक पूरा कर पाते हैं और ना वो उस दिखावे के साथ चल पाते हैं। फिर बच्चा हुआ ना वो कहीं का भी एक तरह से ना वो अपने टैलेंट को निखार पाए। कहते हैं ना दोस्तों, जो हमारी स्किल्स हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो हम खेलों की बात कर रहे हैं, खैर तो जो बच्चे पहले मिट्टी में पानी में खेलते थे और वहीं से उन्हें पता चलता था कि नहीं, हम में कौन सी ऐसी खेल है जिसका जुनून हमारे अंदर है, लेकिन आजकल बच्चे घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलते, तो वो कैसे जानेंगे कि उनमें कौन सा टैलेंट जो है वो भरा पड़ा है। तो पेरेंट्स को ये उम्मीद करना छोड़नी चाहिए, उन्हें हर एक फील्ड में बेहतर बनाइए,
तभी वो आपसे एक हर बात जो है वो शेयर भी कर पाएंगे, अपनी भावनाओं को भी आपके साथ आपके सामने रख पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे गलत रास्तों की ओर बढ़ते जाएंगे, जब वो कहीं भी बेटर नहीं कर पाएंगे, और वो भी प्रेशराइज के चलते, अपनी खुशी से नहीं प्रेशर के चलते। तो वो तनाव आज की डेट में बढ़ रहा है, वो यही रीजंस है। तो खैर दोस्तों, ये तो बातें हैं, और भी जानेंगे हम कि ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस क्यों मनाया जाता है, आज के दिन, आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ और साथ ही साथ ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे। और जैसे कि आप सभी ने सुना है और आप सभी जानते भी हैं कि ये जो हमारा जीवन है बहुत कीमती है ना दोस्तों, वाकई बहुत ही कीमती है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो ये एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। लेकिन हर नया दिन आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका देता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी ये महसूस होता है कि उसकी वफादारी व्यर्थ चली गई। कई बार दोस्तों हम इतनी ईमानदारी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और फिर भी ना जाने क्यों कुछ चीज़ें इतनी गलत हो जाती हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों ही इतना ईमानदार हैं, जो गलत कर रहे हैं, जो झूठ फरेब के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ तो कभी कुछ होता नहीं। तो दोस्तों इस बात को मैं जो आज के दिन खासियत है, ओलंपिक डे जो है आप सभी मना रहे हैं खेलों के बारे में, तो ये जो खेलें ओलंपिक्स हैं ये हमें एकजुट करती हैं, एकजुटता की भावना को बढ़ावा देती हैं। तो खेल का मैदान सिर्फ हमें एक अच्छा प्लेयर नहीं बनाता, एक अच्छा इंसान भी बनाता है। दोस्तों जब हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, जब हम कहीं बाहर खेलने के लिए जाते हैं, देश विदेश के साथ जब हमारा कंपटीशन होता है, खेल्स होती हैं, तो वहाँ हम ये भी सीखते हैं कि पेशेंस जो है वो किस तरह से हमें बनाने होंगे, किस तरह से हमें जो है अपने आप पे कंट्रोल करना है, किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ बात करनी है या बिहेव करना है। तो ये सारी चीज़ें एक खेल के मैदान से भी हम सीखते हैं, छोटे बड़ों से किस तरह से ट्रीट करना है तो वहाँ भी पता चलता है। और अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट को पहचानते हैं, सबसे बड़ी बात जो कि अक्सर कुछ लोग पूरी ज़िंदगी नहीं पहचान पाते। तो ये जो ज़िंदगी के मौके हैं, ये जो अवसर हैं दोस्तों, इन्हें जाने मत दीजिए, इनकी अहमियत को समझिए। और इस अहमियत के साथ अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आजकल तो जिंदगी को ही खेल बना दिया है, खेलों की हम बात कर रहे हैं, एक खेल तो होते जो मैदान में खेले जाते हैं या तो इंडोर खेल्स होते हैं या आउटडोर होते हैं, तो आजकल बच्चों के साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों के साथ खेलते हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, तो वो भी एक गेम्स होती हैं और वो गेम्स इतनी खतरनाक होती हैं ना कि क्या ही बोलें दोस्तों। कुछ लोग तो उनको गेम्स का जी भी पता नहीं होता है, लेकिन कुछ इतने माहिर होते हैं ना कि वो तो फतेह हासिल करते हैं उन चीज़ों में, लेकिन समझ नहीं आता कि वो अपनी हर एक सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं जब वो दूसरों के साथ इस तरह की गेम्स खेलते हैं। तो दोस्तों रहना तो इसी धरती पे है, इसी दुनिया में रहना है, कोई कुछ लेकर ना तो गया है और ना ही लेकर जाएगा, लेकिन हाँ जो हम कर्म करेंगे वो ज़रूर हमारे साथ जाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर गलत किसी के साथ करोगे तो वापस इतनी हिम्मत भी रखिए कि आप गलत बर्दाश्त कर सको, ऐसा ना हो कि खुद जो मन में आए, जो जी में आए वो सुना दिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो दूसरों के सामने किसी की बेइज्जती करने से पहले एक बार नहीं सोचते, चाहे वहां पे 100 लोग क्यों नहीं खड़े हैं, वो किसी की भी इंसल्ट ऐसे मुंह पे कर देंगे। लेकिन जब खुद की बारी आती है तब कोई एक भी इंसान सामने हो और अगर उनको कुछ बोल दिया जाए तो उनकी ईगो इतनी हर्ट हो जाती है ना कि क्या ही बताएं। फिर तो वो कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे सारे उखाड़ उखाड़ के जो है उनसे बदला लेने की वो रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिंदगी में इंसान हैं हम और इंसानों की तरह रहें तो शायद ज़्यादा बेहतर है। ये फालतू की चीज़ें समय बर्बाद करती हैं और जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है कि जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, आप अपनी जगह पे सही हैं, किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने कर्मों पे, अपनी राह पे सच्चाई और लगन के साथ बढ़ते रहिए। कोई देखे ना देखे, सिर्फ एक ऐसे हैं जो ज़रूर देखते हैं और उन्हें आपको कोई भी बात प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो कर्मों का हिसाब
समय के साथ जरूर करते हैं। तो बस विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए। लोगों का काम है बातें करना, नीचा दिखाना तो उन्हें दिखाने दीजिए। फिलहाल आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

सो इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इन जिंदगी की बातों से थोड़ा सा हटकर अब चलते हैं कुछ खास जानकारियों की ओर, क्योंकि जानकारियां भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, प्रदेश सरकार ने प्री 2016 सेवानिवृत्त पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके पेंशन संशोधन से जुड़े सभी लंबित एरियर का भुगतान जुलाई 2026 में करने का फैसला लिया है। वित्त पेंशन विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जुलाई माह में शेष बकाया राशि एक मुश्त जारी की जाएगी, जिससे हजारों पेंशनरों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जुलाई में ये भुगतान होने के बाद प्री 2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के संशोधित पेंशन एरियर का 100% भुगतान पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही इस श्रेणी के मात्र लाभार्थियों का कोई बकाया एरियर शेष नहीं रहेगा। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से, आप सभी की अपने रेडियो दोस्त रुचिका के माध्यम से। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत इसी के साथ।

ट्यून किया है आप सभी ने इस समय 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं कुछ और खास बातें, कुछ और खास जानकारियां। दोस्तों, प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार 17 से 26 जून तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के लिए कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर हरीश कुमार ने सभी संस्थानों से कहा कि आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाए। जी दोस्तों, नशे की आग जिस तरह से समाज में फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे में जब तक कोई कठोर स्टेप नहीं लिया गया, जब तक कोई खास कदम जो है वो नहीं उठाए गए, तब तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये कैसे बढ़ रही है, बस इसी सोच विचार से कि ये उनके घर की बात है, हमारे घर की बात नहीं है, है ना। तो ये सब बातें बस लोग मजे लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं, लेकिन बात आती है किसी को समझाने, किसी को उस दलदल से निकालने, उस बीमारी से निकालने की, तब लोग पीछे हो जाते हैं, तब लोग ये नहीं सोचते कि हम किसी का जीवन बचाने में मदद करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझेंगे, हम अपनी इंसानियत को नहीं समझेंगे। सबसे खास बात कि जब तक हम अपने अंदर की उस इंसानियत से पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चे देश के बच्चे हैं, ये हमारे घर के या उनके घर की बात नहीं है, ये सभी की बात है। तो सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। और खेलों के आज के दिन हम बात करें, ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हमने एकजुटता की ही बात की कि इससे जो है एकजुटता की भावना हम में आती है, तो वही तो लानी है। तो वो कब आएगी, कब हम एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सहारा देंगे, तो ये समझ हम में है नहीं। लेकिन एक दूसरे को परेशान कैसे करना है, टॉर्चर कैसे करना है, बस ये सब हमें बहुत अच्छे से आता है। तो इन बातों से निकलकर थोड़ा बाहर आइए, क्योंकि दुनियादारी बहुत बड़ी है, तो ऐसे में लोग कब बेवकूफ़ बनाकर निकल जाएंगे, और ख़ास करके ऐसे चंड चलाक लोगों को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों बहुत से हमारी जो फेसबुक लाइव लोग देख रहे हैं तो उन्हें नहीं आइडिया कि हम पूरा प्रोग्राम जो है वो कहाँ और कैसे सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि रेडियो गुंजन धर्मशाला की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप FM के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो वो आपको पता ही है थोड़ा सा लिमिटेड दायरे के अंदर आप सुन सकते हैं, लेकिन हाँ ऐप के थ्रू आप कहीं भी सुन सकते हैं। आप रेडियो गुंजन धर्मशाला सर्च कीजिए और आप इंजॉय कीजिए ये प्यारे प्यारे से कार्यक्रम और प्यारे प्यारे से गीत संगीत, क्योंकि मनोरंजन आप सभी के लिए हमारी तरफ से हर टाइम हर पल जो है आपके लिए है। बिल्कुल। तो दोस्तों आज का ये बहुत ही खास कार्यक्रम और खास दिन है आज, क्योंकि ओलंपिक स्टेज जो है आप सभी मना रहे हैं, तो खेलों का हमारी जिंदगी में एक अलग ही रोल रहता है, अलग ही अहमियत। अब के समय में और पहले के समय में कंपेयर करें तो पहले ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और अब जो है वो कम अहमियत दी जाती है, क्योंकि अब किताबों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, खेल कूद को ज़्यादा नहीं। तभी तो आज हम आए दिन बीमारियों से जूझ रहे हैं। छोटी सी उम्र में न जाने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को हम गले लगा रहे हैं। खाने का सिस्टम सारा बिगड़ चुका है, लाइफस्टाइल सारा बिगड़ चुका है, बस या तो पूरा दिन उन चार दीवारों के अंदर बैठकर किताबों के साथ समय बिता रहे हैं। पहले स्कूल से आते ही बच्चे बैग भी नहीं अंदर रखते थे और निकल जाते थे खेलों के मैदान में मस्ती करने, खेलने के लिए एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों वहाँ से सहयोग की भावना, एक अपनेपन की भावना वहां से पनपती थी, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ही नहीं रहेंगे, बच्चों को बच्चे नहीं होंगे साथ में, तो वो कहाँ जाएंगे? वो पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चों के साथ खेल सके, उनके साथ थोड़ा सा समय जो है वो एंजॉय कर सके, तो बच्चे एक पॉस्चर में बैठे बैठे जो है ना थक जाते हैं और उस वजह से भी बीमारियां उन्हें जकड़ लेती हैं। तो दोस्तों आज ओलंपिक्स डे की बात कर रहे हैं, तो आज का दिन मनाने के लिए आपको कोई एथलीट होना या गले में गोल्ड मेडल पहनना जरूरी नहीं है। ओलंपिक डे सिर्फ टीवी पर दिखने वाले प्रोफेशनल के लिए नहीं, ये हम सभी के लिए है और हम सभी को इसकी अहमियत जाननी चाहिए। जरा पीछे चलते हैं दोस्तों, 23 जून 1894 को ही पेरिस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की स्थापना हुई थी। यहीं से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज 130 साल बाद इसका मकसद सिर्फ ग्लोबल कंपटीशन नहीं रह गया है, ये एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट जैसे ओलंपिक मूल्यों के बारे में है। और सबसे बड़ी बात, ये सोफे से उठकर एक्टिव होने के बारे में है। इस साल दोस्तों 2026 में IOC का एक बहुत ही शानदार कैंपेन है और इसका मैसेज सीधा आपके लिए है, लेट्स मूव, यू कैन डू दिस। चलो कदम बढ़ाएं, आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात तो हमें जिंदगी में हर पहलू से जोड़ती है कि हम कर सकते हैं, बस कदम बढ़ाने की देर है, तो बढ़ाइए और करके दिखाइए कि आप एक अलग अहमियत खुद में रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। जिन लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें करके दिखाइए। वो जुनून, वो जज्बा आप में है, बस दबा हुआ है, उसे थोड़ा सा निखारिए, उसे बाहर लेकर आइए। तो फिलहाल दोस्तों इन्हीं बातों के साथ और भी हम बात करेंगे आज के इस खास दिन की, ओलंपिक्स डे की, लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 MHz।
हर्ट से।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों, हम सभी के साथ ऐसा होता है कि आप दौड़ना शुरू करना चाहते हैं या कोई नया स्पोर्ट्स ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन मन में एक झिझक सी आ जाती है कि यार मैं फिट नहीं हूं या मैं अजीब लगूंगी या लगूंगा। ये कैंपेन हमें याद दिलाता है, जो कि आज के दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि शुरुआत में थोड़ा अजीब या नर्वस फील करना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। किसी भी सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा बस वो पहला कदम उठाना होता है। आपको परफेक्ट टेक्निक या बहुत महंगे स्पोर्ट्स गियर की जरूरत नहीं है। चाहे वो अपने मोहल्ले में 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक हो, अपने कमरे में मनपसंद गाने पर डांस करना हो, योगा मैट बिछाना हो या दोस्तों के साथ क्रिकेट या बैडमिंटन खेलना हो, बस एक छोटी सी शुरुआत करें। क्योंकि फिजिकल मूवमेंट से न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि हमारा मूड भी एकदम से रिफ्रेश हो जाता है। तो आप भी अपने मूड को बिल्कुल रिफ्रेश कीजिए और एक छोटी सी शुरुआत जो कि शायद आपको एक बहुत बड़े मुकाम तक लेकर जाए। तो देर किस बात की है दोस्तों, जरूर आगे बढ़िए। बस एक छोटा सा कदम और जिंदगी आपके हाथों में।

प्यारा सा गीत आप सभी ने इंजॉय किया कि एक मासूम सा चेहरा। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो मासूम से चेहरे होते हैं ना, कई बार ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देते हैं, क्योंकि लोग चेहरे पे चेहरा लेकर घूमते हैं आज की इस दुनिया में, आज के इस सफ़र में। तो कब कोई मासूम सा चेहरा आपको कौन सी बहुत बड़ी परेशानी में डाल दे, कोई नहीं जानता। इसलिए सतर्कता हमारे हाथों में है, सावधानी हमारे हाथों में है। तो खैर दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से आप सभी को लेकर चलते हैं एक और खास जानकारी की ओर। दोस्तों, मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन कार्य करने वाले लोग भी बीपीएल में शामिल किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए अष्टम चरण की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पात्र परिवार 5 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद अंतिम सूची 15 जुलाई तक प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल किए जाने के लिए कई नए मानदंड निर्धारित किए हैं। जी दोस्तों, तो उन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए जरूर आप इसमें जो है शामिल होइए। और जो जरूरतमंद परिवार है, अक्सर कई बार क्या होता है, जो इंसान जिनको मतलब कि कोई जरूरत नहीं होती, घर में सभी जॉब कर रहे होते हैं, सभी सेटल्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वो उन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। और उसी के चलते जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जो कि बहुत ही गरीबी दर से गुजर रहे होते हैं, जिन्हें जरूरत वाकई में जरूरत होती है, वो पिछड़ जाते हैं, या यूं कहें कि वो पीछे ही रह जाते हैं। तो जरूरतमंद लोगों तक हर सुविधा, हर एक बात को पहुंचाना हमारा दायित्व है, ना कि स्वार्थी बनकर सबसे पहले खुद आगे आना, ये हमारा दायित्व नहीं है। दोस्तों हेल्प कीजिए, ये हमारे कर्म हैं, और कर्मों को सही रखेंगे तो आगे आने वाला समय हम सभी का सही हो सकता है। और आज के इस बहुत ही खास कार्यक्रम में हम बात भी दोस्तों खेल यानी कि ओलंपिक्स की कर रहे हैं। तो जो होड़, जो एक जुनून है, वो बच्चों में कहीं कम देखने को मिल रहा है। तो ये आज का दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए, इस महत्व को पहुँचाया जाए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ना कि एक दूसरे को देख के बस एक अगर इस फील्ड में जा रहा है तो हम भी उसी फील्ड में चल पड़े, भले ही हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन दुनिया जा रही है तो हम भी चल पड़ते हैं। अरे कब तक इस भीड़ के पीछे भागते रहोगे, अपना एक वजूद, अपनी एक पहचान बनाइए कि लोग आपके पीछे चले, उतने काबिल बनिए, उस हुनर को निखारिए, उस हुनर को लोगों के आगे लेकर आइए। दुनिया के पीछे तो हर कोई चलता है, आपके पीछे दुनिया चले ऐसे बनकर दिखाइए। तो उसके लिए जरूरत है खुद से मुलाकात की, खुद को समझने की, और खास करके अपनों को समझने की। बिल्कुल दोस्तों, तो आइए इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और बहुत ही प्यारा सा मस्ती भरा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़।

तो बहुत ही प्यारा सा मस्ती भरा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 MHz इस समय आप सभी ने ट्यून किया है और अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं जी दोस्तों। तो बहुत ही खास बातचीत और बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत आप सभी तक पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे जिस तरह से हम अपनी बातों के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं उसी तरह से धीरे धीरे समय भी उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां रुचिका और आपके साथ का एक एंड पॉइंट होने को होता है। जी दोस्तों, बहुत सारी बातें होती हैं और बातों को करते करते पता ही नहीं चलता कि कब 9 बजे और कब 11 बज गए। मतलब अभी 2 ही मिनट बचे हैं हमारे इस प्यारे से साथ के, मन नहीं होता क्योंकि बातें ही इतनी सारी होती हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, ये जो समय की पाबंदी है ना, ये रोक देती है कि बातों को यहीं बस रोक दीजिए। कोई बात नहीं, समय अपना है और इसे हम चाहें तो अपना बना भी सकते हैं, है ना। किस तरह से, इन प्यारे प्यारे से लम्हों को खूबसूरत बनाकर, हर एक पल को अपना बनाकर। जी दोस्तों, तो आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के समय को बेहतर बनाइए, खुशी से भरिए और इन्जॉय कीजिए। तो बहुत सारी बातों के साथ अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। और आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्जॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और साथ ही साथ अपने अलग अलग अनाउंसर्स की आवाज़ के साथ जानकारियाँ, बहुत ही खास बातचीत, हर दिन एक नई शुरुआत नए लम्हे के साथ, नए अनाउंसर के साथ होती है आप सभी की। जी दोस्तों, आपके चेहरों पे मुस्कान के लिए हम ये ढेर सारी बातें लेकर आते हैं और ढेर सारे गीत

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या?
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे। और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
12: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
13: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
14: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
12: तुम क्या खड़ा?
14: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
15: ले जाए पक्का?
14: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
17: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
18: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
17: हाँ बोलो।
18: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
17: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
18: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
14: गजब बेइज्जती है।

पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय

0: है, देने पड़ जाएंगे।
1: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
2: UPI पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
1: रिसीव करते वक्त नहीं।
2: तो याद रहे,
3: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
4: पंडित, मुहूर्त कब का निकला?
5: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
4: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
6: आप चिंता ना करें।
4: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
5: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
6: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
7: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
5: तुम क्या खड़ा हो?
7: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
8: ले जाए पक्का?
7: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
9: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो है, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
10: बेबी ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
11: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
10: हाँ बोलो।
11: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
10: अभी बताती हूँ। बेबी टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
11: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
12: गजब बेइज्जती है।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपकी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी दोस्तों, तो अधिवक्ता रूमा जी के साथ और मेरे साथ जुड़कर आप सभी जानते हैं और जागरूक होते हैं अपने अधिकारों के प्रति।
1: और रुचिका, हम भरते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे हौसलों की उड़ान। और इस उड़ान को पंख मिलते हैं जब हम मनोरंजन के साथ साथ बहुत ही उम्दा जानकारियां अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे दोस्तों को ये जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उनका मार्गदर्शन भी करती होंगी।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, हौसलों की उड़ान किस लिए कहा गया है ये आप सभी जान ही चुके होंगे, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है मेरे हौसलों की उड़ान। तो हाजिर हो गए हैं हम दोस्तों कार्यक्रम लेकर आपके साथ। तो रूमा जी,
1: बिल्कुल
0: बताइए, आज के समय में क्या अपडेट है लोगों के लिए? ऐसी कौन सी न्यूज है जो बहुत सुनने को मिल रही है, या क्या क्या समस्याएं हैं जो देखने को मिल रही हैं?
1: बिल्कुल रुचिका, हम अक्सर कोशिश करते हैं कि कुछ नया लेके अपने दोस्तों के साथ आए। और अक्सर कई बार हमारा मन दुनियादारी में जब हम उलझ जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आती है जिनको देख के हमारा मन जो थोड़ा भावुक हो जाता है। और रुचिका, हम अपने इस कार्यक्रम में हमेशा बात करते हैं कानून अधिकारों की, जिसमें हम स्त्री और पुरुष बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हम लोग ना एक विशेष वर्ग को हमने थोड़ा सा अलग रख दिया है हाशिए पे लाके, और ये विशेष वर्ग हमारा पुरुष समाज है। उनको भी देखिए, वैसे तो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर महिला आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि पुरुष भी हमारे अत्याचार सह रहे हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का जो कानून है हमारा, उसका दुरुपयोग भी सामने आ रहा है। और अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज सुनी, एक व्यवसायी ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से आके खुद को आत्महत्या जैसा संगीन कदम उठाया उन्होंने। और ये बहुत ही दुखदाई सा लगा कि क्या सच में हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हम लोग एक दूसरे की मिलकर मदद करते हैं, हम कानून हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं, लेकिन क्या इस कानून के दायरे में आके हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे?
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों रूमा जी ने। रूमा जी, अक्सर पता है क्या होता है, जैसे कि अभी आपने कहा कि घरेलू हिंसा के चलते या प्रताड़ना के चलते, मतलब पत्नी के द्वारा आत्महत्या तक मजबूर हो गए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पता क्यों ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जहाँ पर भी एक औरत आवाज उठाएगी या कुछ भी, चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है, पर उनकी बात को सुना जाएगा।
1: बिल्कुल, महिला की हर एक बात को प्राथमिकता दी जाती है।
0: बिल्कुल,
1: और ऐसे में अगर कोई महिला पुलिस के सामने, कोर्ट में, कचहरी में, कहीं भी जाती है और अपना व्यथा जो भी सुनाती है, तो हम उसको सच ही मानते हैं। और इसके पीछे कारण पता क्या रहता है, हम शुरू से मानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में महिला जो है वो प्रताड़ित होती है, उसके साथ अत्याचार होते हैं, उसको हाशिए पे रख के अनदेखा किया जाता है उसकी, तो इस वजह से भी कई बार जो है पुरुषों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है।
0: जी,
1: क्योंकि रुचिका, हम ये नहीं कह सकते कि हर एक महिला गलत करती है।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत सारी महिलाओं के साथ गलत भी होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो हैं शायद इन कानूनों का अनुचित उपयोग भी करती हैं, और हमारे सामने इस तरह के मैटर्स आते हैं। और हमने कई बार देखा है कि कई बार पुरुष जो है, जैसे अभी अतुल सुभाष की बात हम करें, अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से त्रस्त होकर ही उन्होंने सुसाइड किया, और अपना लगभग 32 या 33 पेज का उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी सारी व्यथा जो है वो आम जनता के सामने लाके रख दी। और जब इस चीज को हम सब ने देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्या महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं? तो ये थोड़ी सी बातें जो है वो चिंता का कारण भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये जो कानून है हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं अपनी समस्या लेके, तो ऐसे में हर एक महिला जो यहाँ पे सच में प्रताड़ित भी होगी, उसको भी संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा,
0: किया जाएगा।
1: बिल्कुल, और उसके ऊपर एक शंका जाहिर की जाएगी कि सच में महिला के साथ गलत हो रहा है कि नहीं।
0: जी बिल्कुल, तो अभी आपने शुरुआत में ही चिंता वाली बातें शुरू कर दी, दी हैं रूमा जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे जो दोस्त है वो भी चिंता में चले जाएंगे कि भाई नहीं, कहीं आज ये बातों का पिटारा ही तो नहीं खोलने वाले
1: हैं। नहीं बिल्कुल, हम किसी को चिंता में नहीं जाने देंगे
0: जी।
1: तो क्यों ना मिलके हम एक प्यारा सा गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, क्योंकि उन्हें चिंता से बाहर भी तो लेके आना पड़ेगा, उन्हें पहले से ही डर हो जाएगा, तो फिर कार्यक्रम में तो अभी बहुत सारी जानकारियां हैं उनके लिए। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के साथ आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: इस प्यारे से गीत के बाद रुचिका हम फिर से जुड़ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ
1: जी,
0: और हम बात कर रहे थे आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं हमारे सामने जहाँ पे हमें लगता है कि हमें लीक से हटकर थोड़ा सोचना पड़ेगा। महिलाओं को बहुत सारे अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग होता है जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं इस तरीके से सामने आता है कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं वो उन अधिकारों का कानूनों का जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं
1: जी।
0: लेकिन फिर भी हम जो महिलाएं हैं लीक से हटकर भगवान ने हमें कुछ ऐसे गुण डाले हैं जिनके बारे में अगर हम चर्चा ना करें तो मुझे लगता है कि जो चर्चा हम कर रहे हैं वो थोड़ी सी अधूरी रहेगी।
1: जी बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने। पता क्या होता है, अक्सर हम क्या करते हैं जब भी हम बात करते हैं एज अ सोसाइटी बात करें या ऐसे नॉर्मल बातचीत भी करें

0: तब हम क्या करते हैं, या तो पुरुषों के बारे में ही बात करते हैं, या तो बच्चों के ही बारे में बात करते हैं, या तो फिर
1: महिलाओं
0: के बारे में बात करते हैं। पर बोलते हैं ना कि पहलुओं को अगर एक बैलेंस करके चलना है तो हमें दोनों साइड को देखना, उसी तरह से बातें भी रहती हैं कि दोनों पहलुओं को नजर में रखना है तभी हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो साथ ही आपने अभी बात की कि महिलाओं में ऐसे कुछ विशेष गुण।
1: बिल्कुल।
0: तो वैसे तो महिलाएं होती ही गुणकारी है।
1: बिल्कुल।
0: उनमें तो होते ही हर गुण जो है बहुत ही खास होते हैं।
1: इसीलिए तो महिला को इतना सम्मान दिया जाता है समाज में, दुर्गा रूप में, देवी सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में उनका पूजन किया जाता है। तो ये विशेष गुण ही है जो महिला को विशेष बनाते हैं। सबला इसीलिए कहा जाता है, अबला होने के बावजूद भी वो सबला है क्योंकि उसमें विशेष गुणों की जो खान है उसका हम जिक्र किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दोस्तों से उन कुछ गुणों की चर्चा करें।
0: जी जरूर। तो दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते हैं तो महिलाओं में ऐसे कौन कौन से खास गुण रहते हैं, तो सबसे पहला तो दया, करुणा और क्षमा।
1: बिल्कुल।
0: तो ये रुमा जी मैं एक आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि पता क्या होता है महिलाओं में, जैसे हम अभी ये बात कर रहे हैं क्षमा, दया और करुणा की, तो अक्सर हम अगर किसी का ऐसे कोई बच्चा रोता हुआ देख रहे हैं या कोई बड़ा भी रोता हुआ देख रहे हैं तो अक्सर हमारे अंदर वो दया भाव जो है ना वो जागृत हो जाता है और हमसे देखा नहीं जाता।

0: उसी से भी महिलाएं जो है एक विशेष जो है बनती, मतलब एक अलग उनकी पहचान बनती है, क्योंकि वैसे भी बोलते हैं कि जितनी सहन शक्ति एक महिला में होती है वो शायद ही किसी में होगी।
1: बिल्कुल सही कहा रुचिका आपने। लेकिन कई बार ऐसे रुचिका हमारे सामने जो आजकल के समय में, अभी हमने बात करी आपने कि क्षमा जैसा गुण भी हमारे महिलाओं में होता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इससे इतर कुछ चीजें ऐसी भी हैं रुचिका जी, आजकल के समय में हर एक महिला पढ़ी लिखी है
0: जी,
1: शिक्षा का अलग जो है वो पूरे विश्व में है, हर एक महिला पढ़ी लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: और पढ़े लिखे होने के साथ साथ अपने अधिकारों का उनको ज्ञान है
0: जी,
1: अपने परिवार को किस तरह से संभालना है, किस तरह से चलाना है
0: जी,
1: ये सारी चीजें उनमें बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ हर एक चीज को साथ लेके चल रही है
0: जी।
1: लेकिन अभी हमने बात की थी अतुल सुभाष जी की
0: जी,
1: उस मामले में थोड़ा सा आके जो मन था वो ये सोचने को मजबूर हो गया कि अगर महिला में सच में क्षमा, दया और करुणा के गुण हैं, तो फिर वो पुरुष जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत कठोर होते हैं, उनके मन में बहुत सारी पीड़ाओं को जज्ब करने की ताकत होती है, वो अपने दुख दूसरों के सामने नहीं आने देते हैं, फिर भी उन्होंने आत्महत्या जैसा संगीन कदम जब उठाया तो वो कितने मजबूर हो गए होंगे, या क्या वो उस महिला की जिद थी या अहंकार था या ईगो थी, किस वजह से वो इतना भारी संगीन कदम उठाने को तैयार हो गए कि उन्होंने अपने छोटे बच्चों को भी नहीं देखा, अपने माता पिता का और भाई बहनों का भी ध्यान नहीं किया
0: जी। रूमा जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अक्सर क्या होता है ना कि जब हम स्वार्थी बन जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: सेल्फिश हो जाते हैं जिंदगी में, तो हम फिर ना हम ये देख रहे होते कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, किसके साथ गलत कर रहे हैं या सही, मतलब उस समय सही और गलत की समझ
1: बिल्कुल
0: हमें नहीं रहती है।
1: और यही गुण भी हम महिलाओं में है कि हम सही गुण में अंतर बहुत अच्छे से कर पाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कई बार
0: महिलाओं में सिक्स सेंसेस होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और सिक्स सेंस ऐसी होती है कि उन्हें पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है।
1: लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा मन खिन्न हो जाता है हमारा कि हम अपने अधिकारों का इतना दुरुपयोग क्यों करें, क्यों किसी को इतना मजबूर कर दिया कि हम अपने पर्सनल ग्रजेस को लेके, अपने स्वार्थ को लेके हम किसी को इतना मजबूर कर दें कि वो ये भी ना सोचे कि किसी के जाने से उसके परिवार पर क्या असर होगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि हम महिलाओं को अगर कानून ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं तो उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
0: वो ईगो जो है ना कहीं आ जाता है कि हमें ये ताकत मिली है तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
1: हालांकि इस जो अतुल सुभाष का मैटर है
0: जी,
1: हम नहीं जानते सच्चाई क्या है
0: जी,
1: लेकिन जो कुछ भी सामने आया, जो उनके सुसाइड नोट में सामने आया, ये सारी चीजें अगर हम गहनता से देखें तो यही, अभी तो देखिए कानून की बातें हैं, इंक्वायरी की बातें हैं, वो सारी चीजें बाद में ही सामने आती हैं। लेकिन जो कुछ भी उस आदमी ने अपने मरने से पहले इतना कुछ लिखा, अपने परिवार की स्थिति, अच्छी आर्थिक स्थिति होने के बावजूद जो आदमी इतना गहरा कदम उठाने को तैयार हो गया है, तो हम समझ सकते हैं कि किस हद तक वो व्यक्ति मजबूर हुआ होगा, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और अपने परिवार, माता पिता, भाई बहनों के बारे में भी नहीं सोचा, और आज परिस्थितियां हमारे सामने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत गंभीर बातें कर रहे हैं और हमारे श्रोता कहीं नाराज ना हो जाए
0: जी। तो जी जरूर, मुझे समझ में आ रहा है आपकी सॉरी शारे कर रहे हैं, आपको अभी गाने सुनने का मन कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जरूर गाना तो बनता है, क्योंकि बातें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक तो बनता है ना।
1: बिल्कुल बनता।
0: तो आइए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको इस खूबसूरत से गीत की ओर। एंजॉय कीजिए अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और रूमा जी के साथ।

0: अरुचिका जी, बड़ा ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है और मन थोड़ा सा अब फिर से आगे बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अपने श्रोताओं को याद दिला देते हैं कि आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz से। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे हौसलों की उड़ान अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
0: रूमा के साथ।
1: जी, और बातचीत बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही गंभीर भी है, तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल चिका, अक्सर जब भी हम कहीं किसी भी समूह में जाते हैं, बात करते हैं महिलाओं से, अक्सर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि महिला एक ऐसा कमजोर वर्ग है जो जगह जगह उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टॉर्चर करता है, चाहे वो फैमिली हो, बाहर हो, काम के सिलसिले में भी। लेकिन कभी आपने ये भी सुना है पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं?
1: सुनने में वही बात है ना कि जो चीजें हमें दिखती नहीं है उनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है।
0: चीजें तो दिखती हैं लेकिन हमारा समाज ऐसा है,
1: नजरअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में ये चीजें चलती हैं कि स्ट्रॉन्ग जो तबका है हमारा वो पुरुष है, महिलाओं को दबा के रखते हैं उनके साथ।
1: एक बड़ी बात कि लड़कों को पहले से ही बोला जाता है ना कि आप लड़के हैं, ना तो लड़का ये रोते हैं, ना तो लड़के जो है ज्यादा कमजोर, अपनी
0: कमजोरियों को दिखाते नहीं है। लेकिन अभी हम बात करें तो बहुत सारे जो पुरुष हैं हमारे साथी वो भी प्रताड़ित होते हैं और सोशल मीडिया के समय में तो ये चीजें उजागर भी होने लगी हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक चीज और रुचिका, मैं ये कहूंगी कि अगर पुरुष समाज अगर किसी महिला की वजह से या किसी भी वजह से प्रताड़ित हो रहा है ना, तो वो सामने नहीं आते हैं, क्योंकि शुरू से जैसे आपने कहा ना, बचपन से सिखाया जाता है कि उनके साथ कुछ भी बात हो रही है उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है, रोना नहीं है, और वो मन ही मन में अपनी चीजों को दबा जाते हैं, वो बताते नहीं हैं। लेकिन अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिसमें 44% जो पुरुष थे वो घरेलू हिंसा के शिकार थे, और ब्यूरो भारत की बात करें तो यहाँ पर भी देश में जो है पुरुषों की आत्महत्या करने की जो दर है बहुत ज्यादा है
1: जी।
0: और महिलाओं की अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो महिलाओं के आत्महत्या के मामले कम आते हैं, पुरुषों के बहुत ज्यादा आते हैं। और घरेलू हिंसा के मामलों में बहुत सारे जो केसेस हैं पुरुषों के ऊपर दर्ज होते हैं, दहेज के कानून में उनको फंसाया जाता है, और उसमें से ज्यादातर मामले जो होते हैं वो झूठे होते हैं।
1: बिल्कुल। अब आपने घरेलू हिंसा की बात की है रूमा जी, तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि अक्सर जो पुरुष होते हैं ना वो बेचारे फंस के रह जाते हैं एक तरह से उस घरेलू हिंसा के चलते। पता क्या होता है, जब उनकी शादी हो जाती है तो वाइफ, मतलब होता है ना, लड़की ऑब्वियसली एक अलग घर से आई है तो उसे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर कुछ का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो एडजस्ट करने में उन्हें दिक्कत आती है, पर वो कहीं ना कहीं वो जो ईगो है, वो जो अहम है, वो बीच में आ जाता है।
0: आजकल के समय में रुचिका क्या हो रहा है ना कि हम लोग अपने बच्चों की परवरिश इस ढंग से कर रहे हैं
1: जी,
0: कि हमने अपनी बेटियों के मन में ये डाल रखा है कि तू हमारी इकलौती संतान है
1: जी, बिल्कुल,
0: हमने तेरे को सारी सुविधा दी है, तो ससुराल में अगर कोई ऐसी वैसी दिक्कत होगी तो हम बैठे,
1: कोई बात नहीं।
0: और पहले के समय में हम देखें तो महिलाओं को ये बताया जाता था कि तेरा ससुराल ही सब कुछ है, जैसे
1: उनको ही अपना मानना है,
0: उनके बीच में रहना है। लेकिन आजकल के समय में पिछले 10 सालों से अगर हम गौर करें तो ये हो रहा है कि हम महिलाओं को, हम खुद भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं
1: जी,
0: क्योंकि हम ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं अपने बच्चों के लिए।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे में क्या होता है, जब लड़की अपने मन में ये बात लेके जाती है कि उसकी बैक स्ट्रांग है, उसके माता पिता भाई सब उसके साथ हैं, वो कुछ भी कर सकती है,
1: कुछ भी, बिल्कुल, ऐसे चाहे वो आगे वालों को परेशानी ही क्यों ना हो उस वजह से।
0: और आजकल के महिलाओं में, बच्चों में, आजकल के युवा जो वर्ग है उसमें एडजस्टमेंट की जो भावना है वो बड़ी
1: कम तो है ही नहीं। वही तो मैं बात कर रही थी ना कि उसी के जो भावना कहीं ना कहीं कमी है हमें देखने को मिलती है, तो उसी के चलते जो पुरुष है वो समझ में नहीं आता, उन्हें कंफ्यूज हो जाते कि वो अपनी पत्नी की साइड ले या अपनी माँ की साइड ले, फैमिली में कहाँ जाए, तो वो अक्सर है ना प्रताड़ित होने के ज्यादा केसेस देखने को।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अक्सर हमने शुरू से वही किया ना कि हम यही कहते हैं कि महिलाएं एडजस्ट करती हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन मुझे लगता है कि पुरुष भी बहुत एडजस्ट करते हैं। और अगर हम भारत की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी बताया कि अमेरिका में भी 44% मामले जो हैं वो घरेलू हिंसा के हैं। भूटान में 2023 में 778 केसेस जो थे वो घरेलू हिंसा के दर्ज हुए थे, जिसमें से 69 केसेस जो थे वो पुरुषों ने दर्ज करवाए थे, पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा हुई थी। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो हर 3 में से 1 पुरुष जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार है। और पुरुषों के खिलाफ होने वाली हिंसा की आवाज उठती है, लेकिन ये आवाज इतनी धीमी होती है कि जल्दी ही खामोश भी हो जाती है
1: जी,
0: क्योंकि हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि महिला भी पुरुष के साथ ऐसा कर सकती है।
1: तो हम देते हैं ना वहाँ पे, फिर वही अधिकारों का गलत प्रयोग जो है हम करते हैं, कानून का गलत फायदा उठा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर नाइंसाफी होती है दूसरे इंसान के साथ। तभी तो मैंने कहा था ना कि दोनों पहलुओं को जो है हमें नजर में रखना है, तभी हमें कोई भी डिसीजन जो है लेना है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे नहीं कि समाज में सिर्फ

0: को सेटिस्फाई करने के लिए हमने झूठे केसेस पुरुषों पे कर रखे हैं
1: जी।
0: और ये अभी पिछली जो हम घटना की बात कर रहे हैं अतुल सुभाष की, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने, जहाँ पे हमें लगता है कि हम महिलाएं पुरुषों के साथ भी गलत कर रही हैं और इन कानूनों का नाजायज फायदा उठा रही हैं।
1: और रूमा जी, आज के समय में अगर हम देखें ना, तो पुरुषों के साथ वहाँ भी गलत हो रहा है जहाँ पर महिलाएं जो है, पता है क्या, शुरुआती दौर में अब कई बार होता है कि पेरेंट्स जो हैं मतलब जबरदस्ती भी किसी लड़की की अगर शादी करवा देते हैं या कुछ भी है, क्योंकि आज के समय में हर किसी की अपनी चॉइसेस होती हैं, पर फिर भी अगर फैमिली एग्री नहीं है तो वहां पर वो हो जाते हैं ऐसे केसेस, तो वहां आगे उन्हें एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, वो नहीं कर पाती हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको आज की डेट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो वहां पर फिर वो उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, जहां उनका मन नहीं लग रहा तो वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर फिर वो झूठे केस का जो है ज्यादा सिचुएशन बन जाती है।
0: बिल्कुल रुचिका, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आजकल ज्यादातर जो है हम लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को अनुसरण करना शुरू कर दिया है, और उस चक्कर में हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें गलत नहीं लगती है। हम देख रहे हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है
1: जी।
0: और दूसरा, आजकल लिव इन रिलेशनशिप जो है वो भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे पुरुष ही नहीं महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं है। और ऐसे में फिर अपने पार्टनर से छुटकारा पाने के लिए हम दहेज जैसे संगीन उनके ऊपर आरोप,
1: दुर्व्यवहार जो है मेरे साथ घर पे किया जा रहा है, इस तरह के केसेस या एलिगेशन जो है हम लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में यही बात चल रही होती है कि इस सिचुएशन से, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग बाहर है
0: बिल्कुल,
1: और हमें नहीं समझ है कि हम क्या कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने परिवार को तोड़ रहे हैं एक न एक तरीके से,
0: हम अपनी बात को सही से नहीं रख पाते हैं, और सैलून का सहारा लेके एक तो हम अपने पार्टनर को टॉर्चर भी कर रहे हैं, और दूसरा अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं
1: जी।
0: तो है तो ये गलत बातें
1: जी। बिल्कुल, तो यही छोटी छोटी बातें जो है हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हम यही बोलते हैं कि गलत जो है हमेशा महिलाओं के साथ ही होता आया है और आज भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय बदला है, सोच बदली है, उसी तरह से लोग भी बदले हैं, तो दोस्तों ये सिचुएशनें भी बदली हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक महिला के साथ ही गलत हो रहा है, पुरुष के साथ भी गलत हो सकता है या हो रहा है।
0: लोग अपने दिल की बात बता नहीं पाते हैं, इस वजह से वो गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और मुझे लग रहा है हमारे दोस्त ना गलत कदम उठाए, यहाँ से चले ना जाए, तो मुझे लगता है गीत हमें फिर से सुन लेना चाहिए।
1: जी जरूर रूमा जी। तो आइए दोस्तों, आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान, और अभी आप एंजॉय करने वाले हैं कार्यक्रम का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: तो दोस्तों इस गीत के बाद हम एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं आप सभी के साथ बहुत ही प्यारी सी इस बातचीत के साथ। तो आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं दोस्तों अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और रूमा जी के साथ। तो आइए रूमा जी बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और हम बात कर रहे हैं, खासकर हम बात कानून से संबंधित ही करते हैं हर कार्यक्रम में, तो आज भी हम इसी से संबंधित
1: आज का मुद्दा थोड़ा अलग हटके हमारा। आज हम बात कर रहे हैं पुरुष प्रताड़ना की।
0: तो महिलाओं से हमें मार पड़ जाएगी?
1: नहीं, क्यों पड़ेगी भाई, हम लोग बैलेंस बना के चलेंगे ना। महिलाओं के साथ अगर गलत हो रहा है तो हमारे पुरुष भाइयों के साथ भी, मित्रों के साथ भी गलत हो रहा है।
0: जी बिल्कुल, मैंने पहले ही आपसे कहा था ना कि जब भी हमें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें एक बैलेंस जो है बना के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम या तो महिलाओं की ही बात करते हैं या तो पुरुष प्रधान की ही बात करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उसी के चलते हम कहीं ना कहीं कुछ
1: बात के अधिकार की बात करते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तो पुरुष और महिला दोनों समान है। कहते हैं कि घर गृहस्थी की गाड़ी जब चलती है तो दोनों पहिए अगर समान होंगे, बैलेंस होगा उनमें, तो बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक भी पहिया अगर इनबैलेंस हो जाता है तो वो गृहस्थी की जो गाड़ी है वो लड़खड़ाने लगती है और उसका असर जो है हमारे पूरे परिवार पे पड़ता है, हमारे बच्चों पे भी पड़ता है, हमारे माता पिता पे भी पड़ता है, हमारे सगे संबंधी भी उससे परेशान हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा परेशान वो कपल होते हैं जबरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब हम उन पुरुषों की बात करते हैं जो कि किसी मतलब कि झूठे केस में या तो फिर अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार की वजह से कहीं ना

0: रिलेशनशिप की बात करते हैं
1: जी,
0: तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी ईगो में आके या जब हमारे मन की बात नहीं हो पाती है हमारे पार्टनर के साथ, तो तब भी हम झूठे केसेस में लोगों को फंसा देते हैं, अपने पार्टनर को फंसा देंगे। अक्सर हमारे पास इस तरह के सामने हमारे मैटर आते हैं कि शादी का झांसा देकर किसी ने किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है और बाद में वो बलात्कार का झूठा केस उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हो जाता है। और अभी भी बहुत सारे जो केसेस हैं हमारे सामने बलात्कार के, इस तरह के झूठे आते हैं जहाँ पे महिला ने अपनी मर्जी से व्यक्ति के साथ संपर्क बनाया है, संबंध बनाया है, और उसके बाद जब उसकी बात नहीं मानी जाती है, उसके अकॉर्डिंग पुरुष काम नहीं करता है, बात नहीं करता है, या उसकी मंशा जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो वो झूठे केस में उनको फंसा देती है। और बहुत सारे बलात्कार के मामले हमारे सामने ऐसे आते हैं जो झूठे होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, पूरे देश की बात करें, तो 96% जो दहेज उत्पीड़न के मामले हैं वो झूठे होते हैं, क्योंकि वहां पे भी महिला की ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, उसके अकॉर्डिंग फैमिली में वो उसको जगह नहीं मिल पाती है। और महिलाओं में आजकल यही है कि सिर्फ पति पत्नी हो, तीसरा व्यक्ति की जगह होनी ही नहीं चाहिए परिवार में। ये जो सोच आजकल के युवाओं में है वो भी बहुत सारे झूठे केसों को
1: बढ़ावा दे रही है।
0: और आपको एक बात बताऊं मैं
1: जी,
0: अगर हम हिमाचल, तो हमारा अभी इस तरह के बहुत सारे मैटर होते हैं सामने नहीं आते हैं
1: जी,
0: लेकिन भोपाल में एक इंटरनेशनल संस्था बनी थी, सेव इंडियन फैमिली
1: जी,
0: तो यहाँ पर बहुत सारे मामले जो हैं वो पुरुषों ने दर्ज करवाए हैं। और एक भाई नाम से संस्था बनी है यहीं पे
1: जी,
0: भोपाल अगेंस्ट इनजस्टिस, जिसको भाई शॉर्ट फॉर्म में भाई कहते हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं ये दोनों ही प्रताड़ित पुरुषों के लिए काम कर रही हैं
1: जी।
0: और इनके जो संस्थाओं ने जो काम किया है पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से डील करती हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रयासरत रहती हैं। बहुत सारे पुरुष भी इन संस्थाओं के माध्यम से अपनी FIR थानों में दर्ज करवाने में सफल हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा है जब कोई पुरुष थाने में जाएगा ना FIR करवाने अपनी पत्नी के खिलाफ या किसी भी महिला के खिलाफ कि इसने मेरे साथ गलत किया है, तो हम लोगों की एक वो रहती है कि ये तो महिला है, ये गलत कैसे कर सकती है। और पुरुष इस शर्म और डर के मारे भी उस महिला साथी के ऊपर रिपोर्ट नहीं करवा पाते हैं, दर्ज केस नहीं दर्ज करवा पाते, क्योंकि एक तो पुरुषों का जो क्या बोलते हैं स्वाभिमान, जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी आड़े आ जाता है
1: जी।
0: उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, वो मारपीट भी सह रहे हैं, हर तरह की उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, लेकिन पुरुष होने की वजह से वो अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं
1: जी।
0: तो ये जो संस्थाएं हैं भाई और सेव इंडियन फैमिली, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और इनके पास इनके जो आंकड़े जो बताते हैं, तो रोजाना बहुत सारे केसेस

0: जो भी पर्सनल समस्याएं थी उनके काउंसलिंग के माध्यम से और अन्य तरीकों से उस समस्या का हल इन्होंने ढूंढा है।
1: जी बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि ये जो सुसाइड केसेस हैं जो पुरुषों के केसेस में ऐसे हमें सुनने को मिलते हैं, तो ये केसेस तब हमें सुनने को मिलते हैं क्योंकि जब पुरुष को ऐसा लगता है कि अब मेरी कोई बात सुनी नहीं जाएगी और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को कुछ बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि ये अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं या घर के बारे में ऐसा कौन करता है।
0: वैसे भी हम लोगों में एक ना हंसने की प्रवृत्ति है
1: जी,
0: जब हम कहते हैं ना कि फलां पुरुष ने महिला ने उसको पीटा है
1: जी,
0: तो हम लोग उस पुरुष के प्रति एक अलग सा दृष्टिकोण बना लेते हैं,
1: औरत से मार खा रहा है।
0: तो ये जो सोच है हम लोगों की ये भी पुरुषों को आवाज नहीं उठाने देती है
1: जी।
0: लेकिन इसके लिए एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी है
1: जी,
0: जिस पे पुरुष जो है वो अपनी अगर उनके साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना हो रही है किसी भी प्रकार की, तो वो वहाँ पे अपनी समस्या जो है इस हेल्पलाइन नंबर पे आके बता सकते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा सुन के, नेशनल हेल्पलाइन नंबर पे हर रोज 40 कॉल्स आती हैं जहाँ पे महिलाओं ने पुरुषों को प्रताड़ित किया है
1: जी।
0: और मैं चाहूंगी कि हम अपने दोस्तों को भी ये हेल्पलाइन नंबर बताएं
1: जी।
0: तो हमारा ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर जो पुरुषों की हेल्प के लिए बना है वो है, आप सभी नोट करें, 0888249848। अब देखो 498 इस नंबर में लास्ट है, तो 498 एक ऐसी धारा है जहाँ पे महिलाएं जो हैं वो दहेज का नाम लेके पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं, झूठे केसेस में बहुत सारे पुरुषों को जो फंसा देती हैं। तो नंबर एक बार फिर से नोट करवा दें
1: जी। बिल्कुल,
0: नंबर है 0888249848। और जब भी इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल्स आती है तो उसका पूरा डिटेल जो है वो नेशनल पोर्टल पे दर्ज होती है, उसके बाद पुरुष की हेल्प के लिए जो भी वन पड़ता है उसको करते हैं, चाहे वो पुलिस में FIR दर्ज करवाने से रिलेटेड हो, उनके घरेलू समस्याओं के समाधान के लिए हो, और ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। और अभी इसी पे अभी वर्ष 2014 में इस हेल्पलाइन नंबर पे 38,000 कॉल्स पुरुषों की आई थी, और ये सारी कॉल थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की
1: जी।
0: तो आप देखें कि कितने हमारे पुरुष परेशान हैं कि एक साल में जब ये हेल्पलाइन नंबर आया था तो उसके बाद 38,000 कॉल्स उस साल में आई हैं, तो बहुत सारे पुरुष जो हैं वो प्रताड़ित होते हैं।
1: बिल्कुल, पर वही बात है कि कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम देखते नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पुरुषों में जो है एक अलग सी पावर होती है, उन्हें कोई दुख नहीं होता, उन्हें कोई दर्द नहीं होता, ये हम पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं। और हम तो खैर, हम महिलाएं जो हैं अपना दुख दर्द रो के किसी से बात करके जो है उसे कम कर लेती हैं ना, बांट लेते हैं, पर पुरुष जो है किसी से वो दुख ना तो बांट पाते हैं ना तो वो अपना दुख किसी के साथ बता पाते हैं।
0: बिल्कुल, और मैं आपको एक बात बताऊं, अलग अलग राज्यों के अगर हम आंकड़े लें, जो भाई संस्था और फैमिली सेविंग जो भाई संस्था में आए थे
1: जी,
0: तो वहाँ की मैं बात करूँ तो हेल्पलाइन नंबर पर जो है वो 12.33% के केसेस जो थे वो कर्नाटका थे के थे
1: जी।
0: और दिल्ली जो हमारा NCR एरिया है वहाँ से 11.27% जो केसेस थे वो इस हेल्पलाइन नंबर पे दर्ज हुए थे
1: जी।
0: और अगर हम बात करें तो कुछ राज्यों में जो स्थिति बेहतर भी है, जहाँ पे पुरुषों की प्रताड़ना के मामले ना के बराबर रिकॉर्ड हुए हैं, और उसमें है हमारा नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पुरुषों की स्थिति बहुत बेहतर है। हमारे बिहार, झारखंड और राजस्थान में पुरुषों के जो केसेस हैं बाकी राज्यों के ना के बराबर हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हर जगह पुरुष प्रताड़ित हैं, कई जगह पर अभी भी पुरुषों ने अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ है जहाँ पे उनके साथ गलत नहीं हुआ है, और महिलाएं अभी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, ना कि उनको प्रताड़ित कर रही हैं, तो ये अच्छी बात भी है। लेकिन फिर भी अगर चिंता की बात हम करें तो देश भर में हर साल 96,000 पुरुष जो हैं वो आत्महत्या करते हैं
1: जी।
0: हर 8.5 मिनट में एक विवाहित जो पुरुष है वो मौत को गले लगाता है। और रुचिका एक और बात बताऊं मैं, 2,00,000 पुरुष और महिलाएं जो है वो 498A के मामलों में हर साल गिरफ्तार होते हैं। तो आप देखो, इसीलिए हेल्पलाइन नंबर में लास्ट में 498

0: लिया गया है, क्योंकि जो दहेज उत्पीड़न के मामले हैं वो बहुत ज्यादा हैं और इसमें से बहुत बहुत सारे केसेस जो हैं वो गलत होते हैं, जो झूठे होते हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं हमें तभी देखने को मिलता है जब ये घरेलू हिंसा जो है एक भयानक रूप ले लेती है। तो घरेलू हिंसा क्यों होती है, किस तरह से होती है, ये तो खैर आप सभी जानते हैं, क्योंकि रूमा जी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पर एजुकेशन भी बीच में आ जाती है। तो वो कहीं ना कहीं हम अपनी वो डिग्री का रौब लेके जब हम दूसरे घर में जाते हैं
0: बिल्कुल,
1: तो वहां पर फिर हमें एडजस्ट करने में मुश्किल आती है।
0: आपने जब अभी बात की ना इसकी, तो मुझे एक किस्सा याद आया, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा में था वो मुद्दा।
1: जी,
0: जब एक मजदूर पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, IAS ऑफिसर वो बनी, और जैसे ही उसने वो पद संभाला तो उसको लगा कि मेरे पति के साथ, इस व्यक्ति के साथ खड़े होना मेरे स्टेटस को प्रभावित करता है, तो उसने उसको छोड़ दिया था। तो ऐसा नहीं है, अगर महिलाओं ने आज कुछ अचीव किया है, कहीं पहुंची हैं, तो पुरुषों का बहुत बड़ा सहयोग उनके साथ रहा है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर हम अपनी बोलते हैं ना, पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छी बात है कि पहले के समय में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, पर अब वो अवसर जो है लड़कियों को मिल रहे हैं, वो मौके मिल रहे हैं, और एक ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता जो है उन्हें मिल रहा है। तो उसका हम सही से प्रयोग करें, ना कि वही बात कि कानून का, जिस तरह से हम कानून की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे हम गलत फायदे के लिए लेकर आते हैं अपनी जिंदगी में, तो उसी तरह से हम कहीं ना कहीं शिक्षा को भी एक मोहरा बना लेते हैं अपनी सेल्फिश स्वार्थी होने का, है ना।
0: बिल्कुल, और रुचिका शिक्षा तो जो है वो समाज के लिए आईना है, उसके विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और एक बात मैं बोलूं, जब हम महिलाएं किसी भी राइट का, किसी भी अधिकार का नाजायज फायदा उठाती है ना, तो उसका नुकसान जो है गरीब तबके पे बहुत पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: लोग डरते हैं इन चीजों से।
1: बिल्कुल,
0: और अपने बच्चियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं।
1: और करता कोई और है,
0: बिल्कुल,
1: पर भुगतना किसी और को पड़ता है।
0: बिल्कुल, और इसी वजह से हमारी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा भी होती है। और रीजन रहता है कि हम सब भी अपने अधिकारों का जब गलत इस्तेमाल करते हैं, तो जरूरी जिनको जरूरत है, जिस तबके को जरूरत है, वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लोग उनको घरों से बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक महिला के साथ पूरा समाज बंधा होता है।
1: जी,
0: और जब किसी एक महिला के द्वारा गलत किया काम पूरे समाज को प्रभावित भी करता है, ऐसे में हम लोग अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और हमारी किसी एक व्यक्ति की गलती सारा समाज भुगतता है।
1: जी बिल्कुल, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ गलती किसी से एक से ही हो सकती, गलती किसी से भी हो सकती है, पर हमें उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर गलती हो भी गई है तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम उसे कैसे सुधारते हैं अपने जिंदगी में। पर अगर उस गलती को हम बढ़ावा देते जाते हैं, उस गलती के सहारे पे जिंदगी पे चलते हैं, तो फिर वो बहुत बड़ी गलती है।
0: बिल्कुल, और तो मेरा तो सभी से आग्रह यही है अपने दोस्तों से
1: जी,
0: कि कभी भी अगर आपको कोई भी अधिकार मिला है, कुछ भी आपके पक्ष में है, तो उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। क्योंकि जब हम किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए तो उस समय के लिए वो एक पारितोषिक की तरह हो सकता है, लेकिन हमारा ये दुरुपयोग किसी और का भविष्य जो है वो खराब कर सकता है। और अधिकारों का दुरुपयोग जब हम करते हैं, तो अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे मैटर हमारे सामने आते हैं, अभी हम जिक्र कर ही चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे समाज की इस तरह की जो छवि है वो सब पूरे विश्व में जाए। हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए, उनका सही दिशा में उनका पालन करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो हमारा समाज तरक्की ही करेगा। लेकिन जब हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, तो जो जरूरतमंद व्यक्ति है वो भी उन अधिकारों का प्रयोग करने से कतराएंगे। और एक महिला की जो छवि है हमारे समाज में, कि उसमें करुणा, क्षमा और दया, सहनशीलता जैसी चीजें भरी हुई हैं, ये छवि जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। कहीं कहीं आकर मेरा अपने महिला साथियों से आग्रह है कि अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपने वर्चस्व को बनाए कर रखने के लिए इन चीजों को त्याग दे, और क्षमा, सहनशीलता, दया और करुणा जैसे गुणों को अपनाकर इस समाज के विकास में अपना सहयोग दें। और कहीं भी किसी के साथ गलत ना करें। अगर कहीं हमारी ईगो क्लैश भी हो रही है तो उस ईगो को बैठकर अपने साथी के साथ बैठकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करें, ताकि एक अच्छे समाज की जो परिकल्पना हमारे बुजुर्गों ने करी या हम सोचते हैं कि हमारा समाज हमारा देश इस दिशा में जाना चाहिए, वो सार्थक हो सके।
1: जी, तो रूमा जी, अब मुझे लग रहा है कि हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं।
0: बिल्कुल,
1: और बहुत जागरूक भी कर लिया अपने दोस्तों को। तो अब समय हो गया है सभी से अलविदा लेने का। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज
0: अपने पन की।

0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से NAFIX.in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज़ ऑन EIR ऐप और न्यूज़ ऑन EIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविजर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की

घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, प्लान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो?

0: आपको एक फोन आएगा।
1: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
0: या आपको एक फोन आएगा।
2: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
0: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
2: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
1: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
2: रिसीव करते वक्त नहीं।
1: तो याद रहे,
3: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
4: पंडित, मुहूर्त कब का निकला?
5: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
4: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
6: आप चिंता ना करें।
4: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
5: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
6: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
7: नहीं, हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
5: तुम क्या खड़ा हो?
7: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
8: ले जाएं, पक्का?
7: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
9: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो है, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
10: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
11: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
10: हाँ बोलो।
11: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
10: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
11: ऐसे का पेड़ नहीं दिखा।
12: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या।
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोल नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
11: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
14: ले जाए पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
17: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
16: हाँ बोलो।
17: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
16: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
17: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
13: गजब बेइज्जती है।

आमविदश मिलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक ता श्रोताओं कर दिन कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने तो तोहां सारे इन्ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी।

है तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी मैं है एक आशोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चल गए तने सुन देन एक और प्यारा दिया गीत।

आहां बोला दे न रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहां सारेयां ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनदे ने इक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो शो तो बढ़ दे ना कार्यक्रम च अग्गे कने सुन दे ने इक और प्यारा दिया गीत।

0: है तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी मैं है एक आशोता हूँ बढ़ते न कार्यक्रम चल गया तेने सुन देन एक और प्यारा दिया गीत
1: जैसा कि विदित है हर बहू ये चाहती है कि उसका पति उसी के प्रेम में डूबा रहे और जब पति उसे पंखी की डंडी मारता है तो वो उसे माँ और बहन के इशारों पर नाचने का ताना मारते हुए

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहां सारियां ट्यून कित्ते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चले है माटी दी महक श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहाँ श्रोता अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हाँ सारे ने बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: बताएं, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, UPI से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, UPI से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: UPI पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पड़ी, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
13: तुम क्या खड़ा हो?
12: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
14: ले जाएं, पक्का?
12: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
17: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
16: हाँ बोलो।
17: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
16: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
17: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
12: गजब बेइज्जती है।

दोस्तों, 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
10: तुम क्या खड़ा हो?
12: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
12: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
13: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
15: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
14: हाँ बोलो।
15: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
14: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
15: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
12: गजब बेइज्जती है।

नमस्कार छोटो, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और हम सचिन कपूर हाजिर बुझेगा तुंदे सभी रे रेडियो सेट में। क्या हालचाल ने श्रोतो तुंदे, उम्मीद करनो तुंदे हालचाल ठीक बुने, घरे बुने और अपने घरे खुश बुने, तंदुरुस्त बुने। बहुत अहम भी है, बहुत ज़रूरी भी है खुश रहना, तंदुरुस्त रहना श्रोतो, है ना। अक्सर बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, तो श्रोतो तो सब श्रोतो कॉल जरूर कर सकते हैं, अस होगी मिली बरती सकते हैं। तो कॉल करने वास्ते, मिलने वरतने वास्ते तुसो नंबर तो है दीन देन, इस नंबर मंच तो है जरूर आओ कि संपर्क कर सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत की सो हो सकते हैं और अपने क्षेत्र जानकारी की सो वो कि साझा कर सकते हैं। लेकिन यह गल खास ख्याल रहे कि जानकारी की सो साझा करने लायक जरूर भुआ, जानकारी की सो रेडियो मंच दसने लायक जरूर भुआ शो तो, है ना। तो नंबर 708 1 1 7 0 9 8 पर तो है कॉल कर सकते हैं श्रोताओ। नंबर एक मौके फिर आऊँ शेयर करनो तू होगे 708 1 1 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा

गीत किया सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो जरूर अब वो कि साझा कर सकते हैं शो तो है ना। और आइए जी कुछ एक जानकारी था असु भी तू वो कि असो साझा करनी शेयर करनी है ना। और शोतो तो है रि बुनी सो वायरल वीडियो की बॉम्बे में के आ शोतो सो पानी का घाटा चुकरदा मानसून नहीं ने रिवा जतों के सो काफ़ी ज़्यादा बॉम्बे अंदर भी पानी रही किया सो कमी महसूस बचु कर दे आशतो ता पानी भी बहुत अहमियत आ यह है सब जान दें लेकिन पानी जो बचाना किया सो है सब न जान दें ता पानी जो बचाना किया सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ बहुत ज़्यादा ज़रूरी आशतो ता चलिए जी कार्यक्रम जो आगू बढ़ दें और कार्यक्रम मंच आगाज़ किया सो कर लें दें शोतो इस प्यारे दे गीता सोगे और फिर तत्व बात छोतो तू सोगे कि ऐसा जरूर ऐह संपर्क कर ले ताई ये छोतो आनंद लेंदन इस प्यारे दे गीतेरा गीतरा तुंदे सबीरे रेडियो सेट में तो बात छोतो बहुत सारी जानकारी असु तुसुगे कि सो शेयर करनी ना सांचा करनी ही

0: एफएम ब्रांड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही छतो तो बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन हाँ आकमो के फिर सभी होने वाले रहा हाइये जी इंदे श्रोतागण के नोगी कनेक्ट बुझ गन कुंड बल्लू कर देन और कड़ी थो बल्लू देन हूँ लेन देन है भी हाँ जी बस तो है कनेक्ट लगे बुना जी थोड़ा करी इंतजार कर रहा तुम्हारी आवाज़ की सो तुम्हारी आवाज़ की सुहासू तकर जरूर पूजने सभी तकर है ना तो सब बन रहे सो तो इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो के कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा जो हूँ कर देन अपने वेडियो सेट में तो है जी फेसबुक रे माध्यम तो भी जी कि तू पता अजकल लाइव इच्छू कर दे हिन और फेसबुक रे माध्यम तो भी है तू सो की किया सो जुड़े कच्छु कर दे और जुड़ना चाहते भी बस ये लगी डंडे तो ये लगे है जुड़ना तो सूगे फेसबुक रे माध्यम तो भी तो चलिए इस कार्यक्रम जो पूरा होने वास्ते तो है ये तो है हल्के हल्के क्लिप्स के अंदर सो पाओ कर दे इस कार्यक्रम जो पूरा होने वास्ते तो है ज़रूर सोगे जुड़ी सकते हैं जुड़ाव किया सो कर सकते हैं जुड़ाव करने वास्ते जुड़ने वास्ते तो वो दस इस दिन देना है कि गूगल प्लेस ऐप प्ले स्टोर में गच्छा और तड़ी तो है क्या सो वेड़ी गुंजन करी करी अगर तो है लिख ले ता जरूर तू सुन दे ऐप मोलने और इस कार्यक्रम जो तथी में होनी सकते ना बहरहाल रेडी गुंजन धर्मशाला मंच तो बन रहे और इन द कॉलर असुगे श्रोता असुगे कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
1: नमस्ते सचिन जी
0: नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल ने जी चलिए जी टेंशन ना लेनी ना चिंता करी करी कुछ ना बुंदा चलो मोरा दिल ता मोरा बंदा ना मोरा दिल बड़ा कोमल बंदा
1: जी बंदा सचिन जी
0: हां बड़ा कोमल बंदा मोरा दिल ता ना बड़ा चंचल बंदा मोरा दिल ता
1: हां तो रे लेकिन दे सचिन जी पता ना हां बड़े कैंसर हो गए जाओ आज बल्लू बड़ को भाई बड़ के बैठे हैं कि प्रोग्राम में पहले
0: हां जी हां जी
1: सब कुछ खराब दिया शांति सब कुछ खराब है बुरी खराब अपन टेंशन लगे रहने देना
0: चलिए जी टेंशन तो बुंदे है ना टेंशन तो बुंदे है पर चलो हमेशा सो बोल दे ना कि दिल के सो हमेशा पहले बुरा सोचता खराब आदा सोचता लेकिन लेकिन इस दिल जो कि सो थोड़ा करी समझाना पैंदा कि पहले खरा सोच है ना अगर खरा खरा सोच ले तो काश असू होगी खरा ही बुना फिरे है ना तो खरा सोचना जी ये सोचना कि चलो दब्बू बाहर है तो खरा कमा खरा रेया बुरी संगत तो दूर रेया ठीक करने की कोशिश कर दिन कौन दिन गीत तो है हुन्ना चले वेड़ी गुंजन मा
1: वो हुन्ना बरमाड़ी माता रा भजन हुन्ना
0: अच्छा बरमाड़ी माता रा भजन ना
1: सचिन जी झूठी दुनिया झूठा संसार सच्चा दरबार आ रहा
0: अच्छा चलिए ठीक है जी ये तो ठीक बोलो तो है कि झूठी दुनिया झूठा संसार सच्चा दरबार यहाँ रहे क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए ठीक है जी जरूर होने ले तू सुए गीत है ना जी
1: ठीक है धन्यवाद ओके
0: ओके जी नमस्ते श्रोता तो सब भी कनेक्ट हो सकते हैं जनाब 708-8-8-709 पर तुसु कॉल करने हैं नंबर अक मुके फिर आऊँ शेयर करी नो 708-8-709 पर तो है कॉल करे करे अपना पसंदीदा गीत के सो होने सकते हैं और अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो वो की साझा कर सकते हैं यह गलारा खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर बुआ जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक जरूर बुआ सो तो चलिए जी फेसबुक रे माध्यम तो भी असू होगी किया सो मणु जुड़ी चुक रहे हैं और इस कार्यक्रम मंच किया सो हमेशा थो जी रेडियो रे माध्यम तो जुड़ देन तीन छूट रहे हैं, है ना। तहे लेकर चलते हैं तू सब भी जो इस प्यारे दे गीतारी किनारी, लेकिन हाँ इस गीतारी किनारी और फिर गीता थो बाद शो थो अगली कुछ एक जानकारी और अक प्यारी दे स्टोरी जो है अक्सर अपने श्रोता जो हुनंदे थी ये वीडियो रे माध्यम तो सो आज ऐसे कोशिश करनी कि इन द फेसबुक रे माध्यम तो भी किया सो श्रोता तक है सो अक प्यारी दे मोटिवेशनल स्टोरी किया ताहो पहुँचान।

चौदह एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर है श्रोताओं। कार्यक्रम बिल्कुल हिंदी अपनी गप्पा गन सो लाइव चल रही है श्रोताओं। और एक प्यारी दे स्टोरी जटेरा मैं जिक्र करूँ तो तुझ होगी सो स्टोरी लेकर इन दिन श्रोताओं थोड़ा करी प्रिपेयर कर लेते हैं और तीन देखे तो है इस गीतर आनंद की सो लिया श्रोताओं। और आर जे सचिन कपूर सो गए बने रहा

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो यह सब भी ट्यून कर रहा और हूँ सचिन कपूर हा ता अक स्टोरी तो सु अगो असु रखने थी श्रोतो ता स्टोरी जो तू अगो तुसु अगो के असु है शेयर कर दें साझा कर दें। बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप के न सो चल रही न तो ये सब जुड़ी सकते हैं 708-8-7-09 पर कॉल करे करे नंबर आक मुके फिर हम शेयर करनो जनाब 708-8-7-09 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं। बहरहाल इंदे श्रोतागण असुओ के कनेक्टेड हैं आक प्यारी दे स्टोरी की श्रोता सु तू सु होनाने है श्रोता लेकिन नहीं है श्रोता श्रोता वाले लेकर चल दें जो असू के कनेक्ट न कस ग्रात हूँ बल्लू कर दें और कौन बल्लू कर दें ये जानी लें दें। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी सचिन जी। नमस्ते
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: सचिन जी। नमस्कार
0: नमस्कार जी। नमस्कार कौन बल्लू दें और कड़ी थो बल्लू दें जनाब
1: जी। मैं योल।
0: हाँ जी
1: योल तो बोलूँ मैं सचिन जी।
0: योल थों बल्लूंदन योल थों कौन बल्लूंदन जी।
1: अपना गाना साईं साईं ना कर चंदे री रावीए।
0: अच्छा योल थों कौन बल्लूंदन जी साईं साईं मत कर रावीए जरूर होने ले तुस वो
1: योल थों ना ओ पर काम बल्लूंदा तुम दे दोस्त रहा बापू बल्लूंदा।
0: अच्छा जी क्या ना तुम दा जी
1: गाना सुनना सु
0: गाना तो सुआ है जरूर होने ले जी तुंदा ना ना किया
1: गाने हो ना
0: तुंदा ना किया जनाब तुंदा ना किया
1: मेरा तो फर्श हुआ।
0: अच्छा अच्छा ठीक है जी साईं साईं मत कर रावी जरूर होने ले तो सु
1: बड़ा बड़ा धन्यवाद तुम।
0: धन्यवाद जी। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस समय आरजे सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर देने अपने वीडियो सेट में इंड अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। डिसकनेक्ट हो चुके चलिए श्रोतो हम लेकर चल दे तू सब भी जो इस स्टोरी के किनारी श्रोतो 1600 ईस्वी में क्या स्वाक महात्मा रा जन्म हुआ था श्रोतो और सो महात्मा चांद थी है कि कजो की तस समय की सो चाइनीस में किया सो लिख लिखाई की सो चाइनीस में बुंदी थी और ये चांद थी है कि यारी जापान में भी किया जापानी भाषा में भी किया सो तस प्रकार हो गए लिख लिखाई किया सो बुआ और प्रिंट करना चाहती थी है अपनी किताब जो अपने विचार जो है ना अपने अपने संघर्ष जो जीवन अरे वैल्यू हर एक चीज़ जो मूल्य चीज़ सब होंगी ना तिया वही प्रिंट करना चाहती थी है शब्द तस समय जमाना बड़ा भोला भाला बुंदा तो जमाना बड़ा प्यारा बुंदा तो जमाना बड़ा अच्छा बुंदा तो है ना तो ये भीख मंगी करेगी सो पैसे इकट्ठे कर देती है इन्या कम से कम 10-15 साल भीख मंगे और तत्व बाद तू न करे पैसा किए सो जोड़े लो कि आऊँ अपनी भाषा अंदर किया सो किताब किए सो प्रिंट करवाई सकता वे लिखी सकता हा और सो प्रिंट आऊँ करवाई सकता है ना लेकिन ऐसा हुआ कि इन्हें इकट्ठे तो करी ले लेकिन कुदरत वैगो के ऐसो हर कोई झुकी गंदा हा श्रोता हूँ जाए सो कोई भी कोने बो इस दुनिया का शख्स कुदरत अगो के ऐसो जरूर झुकदा हा और झुकने रे गल ये बिछोरे हा कि तड़ी की श्रोता हूँ सो सुनामी चले आए सब कुछ तहस नहस हो चुको और इन्हें जो पैसा इकट्ठा कर रो थो सो तती अंदर किया सो लाईता तिया मनु हो गया सो दीता 10-15 साल रा संघर्ष किया सो यारा जीरो बचगो तत्थ बाद इन्या फिरी यारी उम्र थी तहने 40 साल फिरी इन्या सोचू कि ना मेरे जो सपना मो जो किताब लिखने सो लिखने लिखने जाए कुछ भी बचेगा। अच्छा फिर इं सोचो कि चलो अक मूवमेंट और कर लेंदे अक तैयारी और कर लेंदे अक मौके फिर की ऐसो चली पेंदे 40 साल तो इं फिर शुरू करो। और ऐ अक्सर ये सोचते हैं कि 40 साल मगे असो इंदी जिंदगी अब खत्म जड़ी इन तट्ठी रहना असू इतों बाद असू के करना वे उम्र बुझ गई इनते है ना अमूमन सब मनु ये सोचते हैं छो तो इं फिर शुरू करो। और शुरू करते करते 10 साल फिर बीत गए 10-15 साल फिर लग गए और फिर इं सोचो कि एट लास्ट अब तमो किताब की असो जापानी भाषा में प्रिंट कर ही लेनी है। लेकिन तखड़ियाँ जड़ी सोरेंद थी तड़ी की असो महामारी चले आए बहुत सारे मनु मरे गए बहुत सारे मनु बेघर बुझ गए किसकी खाने ना मुला मोड़ करता तो। और एट लास्ट इं फिर गया सो चीज़ा जो मतलब चीज़ा टूटी एरी बजती एरी मनु रुंदे रे यार दिल फेरी ने मनो और इं फिर जो भी अपने पास इं जिया भी भिख मंगी करे धन कमूरो तो सब लाईता अग अग पैसा गए सो लाईता। और एट लास्ट फिर ये जीरो बच गए जड़ी थो चल रही थी है फिर 15 साल पचू बच गए इं फिर भी हार न मनी कजू को यार जीवन राग के लक्ष्य तो कि मुझे लक्ष्य गया सो प्राप्त करना है वो संघर्ष कर ला जो मर्जी कर ला बुजुर्ग बुझ गए थी 70 साल पुजने वाले थी है। और एट लास्ट इं संघर्ष करो इं अपने आप तो बहुत संघर्ष करो और बहुत सारी चीज़ें क्या ना सो मतलब इं फिर ही शुरू करना अपना जीवन यापन किए सो फिर ही शुरू करो फिर इं भेख मंगे फिर इं पैसा जोड़ो। और एट लास्ट किया सो इं सो बुक प्रिंट की ऐसो भुचे गई एट लास्ट जापानी भाषा अंदर। और इं बहुत शुक्रिया करो धन्यवाद करो और तत्थों बाद गया सो स्वर्गवास भुचे गया। तो छोतो ये प्यारी दे स्टोरी की ऐसो असू क्या सिखाई करी गन दिया ये स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी की ऐसो असू ये सिखाई करी गन दिया कि लाइफ में गया सो अगर तो है लगातार प्रयास कर देन नियंत्रण प्रयास कर दे चल देन तो लाइफ क्या सो जरूर सक्सेसफुल बनते भी है और बनते भी है। अगर तो है आखों दो ही मौके करी करी बह गए तो लाइफ फिर कुछ ना देंदे सो लाइफ में अगर सो 60 साल तो अपनी लाइफ जीरो तो शुरू करी सकते हैं तो है कौन है तो लगातार प्रयास करा अपनी लाइफ सो बेहतर बना अपनी लाइफ सो बेहतर बनाने वास्ते कि अशो तो सो तुस अपना संघर्ष की सो अपू करना पैना है जो भी लाइफ का संघर्ष है सो अपू करना पैना है। तो बहरहाल हूँ सचिन कपूर तुंदा अपना आरजे वीडियो जो कि और बिल्कुल लाइव तो इस समय बन रहे इन फेसबुक रे माध्यम थो भी और रेडियो गुंजन रे माध्यम थो भी तो संघर्ष करना मत छड़ा शो तो। और गंदे गंदे अगल तुसू होगी अली तो टाइम आसू पर फेसबुक रे माध्यम तो अगल बोलना चाहता है कि कुछ ऐसा करा कि दुनिया की असो तुसु होगी तुसु एरे करी शाबाशी शाबाशी दिया तुसु एरे करी थोड़ी करी मोटिवेट बोआ सिरा बुरा मत करा शो तो कजो भी सब कुछ किया सो इट्ठी रहेगा ना कुछ भी सोगे ना गाना सोगे ना धन दौलत पैसा शोहरत गड्डी मोटर बाइका सब इट्ठी रहेगा ना सोगी के गाना तो सिर्फ और सिर्फ इंदी अच्छाई और इंदी ये जीव रेडे ये जीव दूर तो ये सोगी गाने अगर खरा करूर लेते मनु खरा खरा बलना और बुरा करूर लेते मनु मरने तो बाद भी गाली ठुकनी छो तो सो इट्स डिपेंड ऑन यू एंड अस कि ऐह कि ट्रीट किया सो करते हैं। बहरहाल लेके चलते तू सब भी जो इस प्यारे दे गीत तरीके दारी और फेसबुक थो लंदन थोड़ी देर इजाजत सो तो ये कार्यक्रम जो है सब हगो जरूर भरते हैं। और लेके चलते तू सब भी जो इस प्यारे दे गीत तरीके नारी बहादुर भारद्वाज री आवास में ये प्यारे दे गीत था ढोला इस गीत तरह ना सो तो और लेके चलते तुसू

14 FM and 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला। तो सब ये ट्यून कर रहा और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के नाम से चल रही इन शोतों। तो सब जानते होने कि लखनऊ में जो आप सो भीषण अग्निकांड हुआ 15 रे मौत के और सो भोई शतों जी बिल्कुल। तो सब ये दर्शना चाहते यूपी री राजधानी लखनऊ में किया सो सोमवार ही किया सो दिनेवे समय कोई 3 बजे करीब किया सो मंजिल रही इमारत में किया सो आग लगी गया सो तो आग लगने तो 15 मन उड़ी गए सो मौत बुझ गई जबकि 9 अन्य किया सो गंभीर रूप तो घायल हैं। मरने वाले में ज़्यादा छात्र हैं सो तो जिस बिल्डिंग में आग लगे है सो अलीगंज इलाके भी है सो तो है ना। और आग तो लगे है लेकिन 15 छात्र मतलब फिलहाल 15 मनु रे बहुत और तथी में से ज़्यादा गया सो छात्र हैं सो तो। और शॉर्ट सर्किट किया सो बचूरा तो शॉर्ट सर्किट बुने तो किया सो आग लगने रे आशंका भोए सो तो है ना। और गुस्से में थी ये तड़िया रे सीएम योगी जो अब सब है तीनों फटकार के सो सीएम योगी है लाए सो तो। दूजी मंजिला की सो कोचिंग लेव कर दे थी सो तो छात्र बाथरूम में कुछ छात्र के सो बाथरूम में थी मतलब बाथरूम में छिपे गए त्यार दम तक ठीक है सो घुटे गो सो तो है ना। पीएम मोदी के सो जताई संवेदना 2-2 लाख मुआवजा री घोषणा किया सो पीएम मोदी करे है सो तो। बहरहाल कार्यक्रम में जानकारी रहा सिलसिला यहीं ही चलते रहना। तो सब बन रहे ने समय आ जाए सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के सो हूँ कर देना अपने अपने वीडियो सेट में आइए जी लेकर चलते तू सभी इस गीत तरीके ना दी।

श्रोतों बोलते हैं कि समय रा कीमत जानना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिलहाल है समय की ऐसो बुझेगो तुसु सब भी थो अलविदा लेने रा। और इन श्रोतागण ना सूगी कॉल जरूर करूँ कर दें, लेकिन तीनों दसना चाहते हैं कि समय की ऐसो बुझेगो अब है तुसु सब भी थो इजाज़त लेने रा। ताऊ सचिन कपूर तुसु थो इजाज़त ले लेंदा हा। और गंदे गंदे एक फरमाइश थी साई साई मत कर रावी है योल थो योल रे निवासी थी है, यानी फरमाइश में गीत की ऐसो है हूँ लेंदे इन श्रोतों बने रहे। तो सब आर जे सचिन कपूर सोगी गूंज अपने बन रही हो रेडियो गुंजन सोगी बनी रही है श्रोतों। अब थोड़ी देर है तो सुखिया सो रुचिका जो हुना अक बुलेटिन लेकर ही रुचिका किया सुना तुंदे तुंदे वीडियो सेट में और फेसबुक वे माध्यम तो लाइव। हाँ सचिन कपूर लेने इजाजत। नमस्ते धर्मशाला।

0: ऑडियो जंगल।
1: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। अब शाखा डाकघरों में भी EKYC सुविधा उपलब्ध। अब अकेले नहीं है निराश्रित बच्चे, सरकार निभा रही माता पिता की भूमिका। सरकार के स्नेह से बढ़ा बच्चों का विश्वास, सुख आश्रय योजना से बदल रही जिंदगी। मुख्यमंत्री ने शिमला के ऑकलैंड टनल में कार पार्किंग सुविधा का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर मुख्यमंत्री ने ओलंपिक मैराथन को दिखाई हरी झंडी। सस्ते हो रहे क्रूड से तेल कंपनियों को राहत। 10.5 साल की प्रतीक्षा खत्म, 2016 से पहले के पेंशनरों को जुलाई में पूरा भुगतान। बागवानी विभाग में भरे जाएंगे 450 पद। अब इसी के साथ आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पे विस्तार से।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर अपने आधिकारिक निवास ओकओवर से ओलंपिक मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ सीटीओ मार्ग से होते हुए इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल भी शिक्षा का एक स्वरूप है। जिस प्रकार विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार खिलाड़ियों को भी खेलों में उपलब्धियां हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला शहर में ऑकलैंड टनल के निकट नवनिर्मित बहुमंजिला कार पार्किंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पार्किंग सुविधा ऑकलैंड टनल क्षेत्र और उसके आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने, सड़क किनारे होने वाली पार्किंग की समस्या से छुटकारा पाने तथा वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अभिनव पहल करते हुए कानून बनाया है, जिसके तहत निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार इन बच्चों के अभिभावक की भूमिका निभा रही है। सरकार न केवल उनकी शिक्षा और पालन पोषण का पूरा खर्चा वहन कर रही है, बल्कि उन्हें जेब खर्च, भ्रमण और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है, ताकि उन्हें कभी ये महसूस न हो कि उनके माता पिता उनके साथ नहीं है। वर्तमान राज्य सरकार इस पहल के अंतर्गत प्रदेश के इन बच्चों की 27 वर्ष की आयु तक शिक्षा, पालन पोषण और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। इसके अतिरिक्त उन्हें नीट और जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग तथा अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा रही है। अधीक्षक डाकघर धर्मशाला रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि भारतीय डाक विभाग द्वारा ग्राहकों की सुविधा हेतु दिनांक 22 जून से शाखा डाकघरों में ईकेवाईसी आधारित लेन देन की डिजिटल सुविधा मुहैया करवा दी है। अब आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से बचत खाते, आवर्ती खाते एवं सुकन्या समृद्धि खातों में निर्धारित सीमा तक बिना किसी दस्तावेजी औपचारिकता के 50,000 रुपए तक जमा और बचत बैंक खातों से 20,000 रुपए तक निकालने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पात्र खाताधारक किसी भी शाखा डाकघर से लेन देन कर सकेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के खाताधारकों को आसानी होगी। पश्चिम एशिया शांति समझौते की घोषणा के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। इससे सरकारी तेल कंपनियों को होने वाला घाटा काफी कम हो चुका है और अब इनके लाभ में सुधार होने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी रिफाइनरियों और खुदरा ईंधन विक्रेताओं के पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर संयुक्त मार्जिन अब हाल के पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले के स्तर से ऊपर है। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके लंबित पेंशन एरियर का 100% भुगतान जुलाई में करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा सोमवार को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को संशोधित पेंशन के शेष सभी बकाया का भुगतान अगले महीने कर दिया जाएगा। बागवानी विभाग में 450 पद भरने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वीकृति प्रदान की है। इनमें 50 बागवानी विकास अधिकारी सुखविंदर सुक्खू, 100 बागवानी जागरण अकाइव विस्तार अधिकारी और 300 मल्टीटास्क कर्मियों के पद शामिल हैं। इन पदों को अंतिम स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में रखा जाएगा। सरकारी डिपो से सब्सिडी पर मिलने वाले सरसों के तेल के लिए उपभोक्ताओं को इस महीने भी इंतजार करना पड़ सकता है। संभावना है कि जून के अंतिम दिनों में डिपो तक तेल पहुंचना शुरू हो जाएगा। डिपो में मिलने वाले सरसों के तेल अब 160 रुपए प्रति पैकेट मिलेगा, जिसमें लगभग 7 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पर्यटन नगरी धर्मशाला से अब रियल एस्टेट सेक्टर की निगरानी और शिकायत निवारण की प्रक्रिया का पूरा नियंत्रण किया जाएगा।
सोमवार को नगर निगम धर्मशाला के पुराने कार्यालय में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का कार्यालय शुरू हो गया। इससे संबंधित मामलों की सुनवाई और जांच कार्य अब यही होंगे। रेरा एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो भवन निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट की गुणवत्ता, सड़क, पानी, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की विस्तृत जांच करता है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की अमर कृति गीतांजलि का कन्नड़, तेलुगु और मलयालम समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद शुरू किया है। ये पहल संस्थान के टैगोर अध्ययन केंद्र के माध्यम से की जा रही है। इस पहल से नई पीढ़ी भी गुरुदेव के प्रवचनों से रूबरू होगी। इसका उद्देश्य टैगोर के साहित्य और विचारों को देश के व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के अवसर पर आज शिमला के रिज पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने राज्य के विकास में वीरभद्र सिंह के योगदान को स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के एक महान नेता थे जिन्होंने 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दी। उन्होंने प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज हम उनके अमूल्य योगदान को स्मरण कर रहे हैं। प्रदेश की उचित मूल्यों की दुकानों में जुलाई महीने में फिर से प्रदेश के लाखों एपीएल उपभोक्ताओं को 12 किलो आटा ही मिलेगा। केंद्र की ओर से एपीएल उपभोक्ताओं के आटे में पिछले 5 महीने से लगातार कटौती की जा रही है। इस दौरान ट्राइबल क्षेत्रों में सप्लाई भेजने के नाम पर कटौती होने का हवाला दिया जा रहा है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

0: लिया।
1: गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शोध इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यारी सी नमस्ते। इसी संध्याकालीन नमस्ते के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ अभी हमें आप तक पहुँचानी हैं। तो श्रोताओं, 6 से लेकर 8 बजे तक पूरे 2 घंटे का सफ़र अभी हमारे पास बाकी है, और इस 2 घंटे के सफ़र में करेंगे हम आपके साथ ढेर सारी बातें और जानकारियां साझा और सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम के प्यारे प्यारे से गीत। तो श्रोताओं, आप कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो आइए आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से वापसी हम करते हैं, क्योंकि अभी अभी हम जुड़े हैं और जानकारियां का पिटारा खोलने ही वाले हैं। तो आज के दिन को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे। श्रोताओ, ओलंपिक डे आज के दिन यानी 23 जून को हम मना रहे हैं। इसका उद्देश्य खेलों, स्वास्थ्य और दुनिया भर के लोगों के बीच में एकजुटता लाना है, और साथ ही साथ ये दिन दुनिया में ओलंपिक खेलों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की याद भी दिलाता है। श्रोताओं, इसके इतिहास की ओर थोड़ा सा हम रुख करें तो 23 जून 1894 को पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में बैरिस पियरे के कुटिन के प्रयासों के अंतर्गत ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी, और साथ ही साथ इसकी शुरुआत पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य लक्ष्य खेल भावना को जन जन तक पहुंचाना और बिना किसी भेदभाव के खेलों को खेलना है। जी हाँ श्रोताओं, खेलों के बहुत सारे फायदे हमारे जीवन में रहते हैं और खेलें खेलनी चाहिए। इससे शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहती है, हष्ट पुष्ट हमारा शरीर रहता है, और साथ ही साथ बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। और बात करें शरीर की तो शरीर में लचीलापन भी आता है, और फिजिकल एक्टिविटी करने से बहुत सारे रोगों से हम बहुत दूरी बना कर रखते हैं। यूँ कह सकते हैं कि दवाइयों से भी दूरी बनाई जा सकती है। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस समय रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापिस आते हैं और हमारी बात ओलंपिक को लेकर हो रही थी। ओलंपिक खेले हमारे भारतवर्ष में खेली जाती हैं। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य ओलंपिक के महत्व और इसकी ज़रूरतों को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ इस मौके पर कई देशों में खेल कार्यक्रम, सेमिनार और इसके साथ साथ बहुत सारी खेली जाती हैं और इस दिन के मौके पर लोग ओलंपिक के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी एक तरह से लोग जागरूक होते हैं कि खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन्हें क्यों खेला जाता है, क्या कारण रहता है। और जैसे हमने पहले भी बात की कि खेलें खेलने से हमारा शरीर जो है हर तरह से स्वस्थ रहता है, हष्टपुष्ट रहता है और बहुत सारी फ़ायदे इससे हमें मिलते हैं। श्रोता, ओलंपिक की बात हो रही है तो ओलंपिक एक वैश्विक इवेंट है जो दुनिया भर के एथलीटों को अपने स्किल को आजमाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देता है। इसको जो है समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक गेम्स में बांटा जाता है और साथ ही साथ इसमें 200 से अधिक देश 400 से ज़्यादा खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं और 23 जून यानी आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस का मकसद ओलंपिक खेलों और समग्र रूप से खेलों की भावनाओं का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ लाना भी होता है। श्रोता, 23 जून का दिन विश्व भर में ओलंपिक मूवमेंट की स्थापना के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये तो हैं जानकारियां और भी अभी हम साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में आज हम ओलंपिक डे के बारे में बात कर रहे हैं। और श्रोताओं, पहली बार दौड़ की बात करें तो इसका उद्देश्य किसी पदक या कीर्तिमान की प्राप्ति नहीं था, बल्कि जीवन की रक्षा और अस्तित्व को बनाए रखना था। समय के साथ जैसे जैसे मानव समाज विकसित हुआ, अस्तित्व की वही सहज प्रवृत्ति प्रतियोगिता, मनोरंजन और खेलों में परिवर्तित हो गई। आगे चलकर यही खेल मानवता को जोड़ने, संघर्षों को कम करने और विश्व बंधुता की भावना को सशक्त बनाने का माध्यम बने। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारियाँ। जानकारियाँ भी और भी आपके साथ साझी की जाएगी, लेकिन पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत, उसके बाद ढेर सारी जानकारियाँ और भी आपके साथ साझी की जाएंगी। तो

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापिस आते हैं और हमारी बातचीत जो है ओलंपिक गेम्स को लेकर हो रही है। तो श्रोताओं, ओलंपिक इस महान मानवीय चेतना का सर्वाधिक व्यापक और प्रभावशाली स्वरूप है। प्रतिवर्ष आज के दिन से मनाया जा रहा है और साथ ही साथ जो मनुष्य को जो है बहुत कुछ सिखाता है। प्राचीन यूनानी जो है एरेटिक कहते हैं कि इसका अर्थ है कि शरीर मन और आत्मा को श्रेष्ठतम संभावनाओं का विकास करना। और साथ ही साथ ओलंपिक का इतिहास मिथक और यथार्थ के अद्भुत संगम से निर्मित है। और उस समय श्रोता यूनान अनेक नगर राज्यों में विभाजित था जिसके बीच में निरंतर संघर्ष और युद्ध होते थे। पर जैसे ही ओलंपिक खेलों की घोषणा हुई यूनान में पवित्र युद्ध विराम अर्थात बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही जिसमें हथियार शांत हो गए और सभी सीमाएं खिलाड़ी तथा दर्शकों के लिए खोल दी गई। यही परंपरा इस सत्य को प्रमाणित करती है कि खेलों के मूल आत्म संघर्ष को बढ़ावा नहीं बल्कि संघर्षों को समाप्त करना है। ओलंपिक ने अपने प्रारंभिक स्वरूप से ये सिद्ध कर दिया कि मानवता को जोड़ने की शक्ति किसी भी सैन्य बल से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो मंजर धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। 1896 की बात करें तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी का अवसर नहीं दिया गया था, पर समय के साथ साथ ये स्थिति बदली और 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार 22 महिलाओं ने भाग लिया। आज ओलंपिक में लैंगिक समानता लगभग पूरी रूप से स्थापित हो चुकी है। मैरी कॉम, पीवी सिंधु, सिमोन वाइल्डस और कैटी लेडिक जैसी खिलाड़ियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा और उपलब्धियों का संगम जो है संभव है। और साथ ही साथ श्रोताओं, परिश्रम और संकल्प लेकर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में शरणार्थी ओलंपिक टीम का गठन एक ऐतिहासिक पहल थी। उनमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया था जो युद्ध, हिंसा और विस्थापना के कारण अपने देशों से वंचित हो चुके थे। ओलंपिक ध्वज के अंतर्गत उनकी भागीदारी ने संदेश दिया था कि नागरिकता छीनी जा सकती है लेकिन मानवीय गरिमा नहीं। ये ओलंपिक आंदोलन की सबसे मानवीय उपलब्धियों में से एक है। तो श्रोताओं, अपनी बातों को थोड़ा सा यहीं पर देते हैं विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का। प्यारा सा गीत आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

चलो, थोड़ा सा तकनीकी खराबी के कारण गीत अभी नहीं हम आपको सुनवा पा रहे हैं, लेकिन बातों का पिटारा अभी हमारे पास बहुत सारा है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। जानकारियाँ भी बेहद ज़रूरी होती हैं श्रोताओं, थोड़ा सा अपनी जानकारियों को हम आप तक पहुँचाते हैं। और जो है, हम बात कर रहे थे ओलंपिक के बारे में कि भारत में लंबे समय तक व्यक्तिगत संप्रदायों में सफलता के लिए संघर्ष किया गया और 21वीं सदी में परिस्थिति बदलने लगी। 2008 में अभिनय बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीत कर जो है इतिहास भी रचा था। तो श्रोताओं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में भाग लिया, और लेना भी चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर किसी को खेलने का शौक़ है तो इसे भी हम करियर बना सकते हैं, और जीवन की हर राह पर हर काम ज़रूरी होता है। तो फिलहाल इस समय ज़रूरी है हमारे लिए अपने श्रोताओं को गीत सुनाना, तो कोशिश करते हैं कि आप तक गीत पहुँचे।

श्रोता, ओलंपिक खेलों की हम बात कर रहे हैं तो ओलंपिक का मैदान वास्तव में विश्व का एक लघु रूप है जहां विविध संस्कृतियां, भाषाएं और राष्ट्र का साझा उद्देश्य के साथ एकत्रित होते हैं। ये दिवस केवल पदकों से नहीं मापा जाता बल्कि उस भावना से मापी जा सकती है जो हार और जीत दोनों में सम्मान बनाए रखती है। सूर्य की किरणों से उज्ज्वल ओलंपिक मशाल आज भी मानवता का सही संदेश देती है कि हम और तेज और ऊंचे तथा अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं, पर सबसे बड़ी उपलब्धियां तब होती है जब हम ये साथ मिलकर करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है हम सभी के लिए ज़रूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस केवल एक खेल उपलब्धि का स्मरण करना नहीं है श्रोताओ, ये मानवता का साझा विश्व का उत्सव है। ये हमें सिखाता है कि प्रतिस्पर्धा और सहयोग परस्पर विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। खेलों के माध्यम से हम न केवल शारीरिक क्षमता का विकास करते हैं बल्कि सहिष्णुता, सम्मान, अनुशासन और भाईचारे जैसे मानवीय मूल्य को भी सशक्त बनाते हैं। तो श्रोताओ, अपनी जानकारियों को फिर से थोड़ा सा हम यहाँ पर रोकते हैं और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत। तो सुनते रहिए रेडियो।

श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में कुछ जानकारियां श्रोता हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए उन्हें साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 28 जून 2026 को आयोजित किए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज यहाँ राज्य स्तरीय प्रतिरक्षण कार्यबल समिति की बैठक सचिव स्वास्थ्य एम सुधा देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अभियान के सफल तथा प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न विभागों की भूमिका एवं दायित्व पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया है कि अभियान के लिए आवश्यक पोलियो वैक्सीन की आपूर्ति प्रदेश के सभी जिलों को कर दी गई है तथा अभियान के सफल संचालन के लिए अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। स्वास्थ्य सचिव ने अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने पात्र बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाने, बच्चों की अधिकतम संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करके बूथ गतिविधियों पर प्रभावी संचालन, घर घर जाकर जागरूकता एवं सत्यापन कार्य तथा समुचित पर्यवेक्षण एवं निगरानी पर विशेष बल देने के निर्देश दिए हैं। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा हम यहाँ पर रोकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

तो इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम जो है आप सभी के रेडियो सेट पर चल रहा है। गुड इवनिंग धर्मशाला, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और जानकारियों को पिटारा थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कोई और जानकारी भी आज हमारे पास है क्या। जी हाँ, बिल्कुल जानकारी और भी हमारे पास है और आज के दिन को हम मना रहे हैं यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस डे यानी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। इसे प्रतिवर्ष आज के दिन यानी 23 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के लोक सेवकों के योगदान को सम्मानित करने, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ श्रोताओं आज के दिन के इतिहास की स्थापना की थोड़ी सी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को ये संकल्प पारित कर 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोकसभा दिवस के रूप में घोषित किया था। ये पहली बार 2003 में मनाया गया था। तो श्रोताओं अपनी जानकारियों को थोड़ा सा रोकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: साई के 7 बजे है और कार्यक्रम में समय हो गया है समाचारों का।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये भी चुनेगा, वो भी चुनेगा, ये हट कर वो हट कर मैं ना रुकेगा। आइला रे आइला, आपकी चमाइला, आइला रे आइला। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के भूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार, 13 पद्म भूषण और 130 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला 1 LPG करियर, 1 कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
3: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरि और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज़्बेकिस्तान से। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शुद्ध इसी गुंज के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारी बातचीत हो रही थी समुदाय और राष्ट्र के विकास में लोक सेवकों जैसे प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और साथ ही साथ कड़ी मेहनत और समर्पण को सराहने के लिए। तो श्रोता, उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की बात करें तो सार्वजनिक प्रशासन में नवाचार, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना है। नई पीढ़ी को सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में करियर चुनने के लिए प्रेरित भी करना है। इसके साथ साथ इस दिन लोक प्रशासकों में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार उन लोक सेवकों और संस्थाओं को दिए जाते हैं जो बेहतर सेवा वितरण, समावेशी विकास और जनहित के लिए नए और रचनात्मक तरीके अपनाते हैं। तो श्रोताओ, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा हम यहीं पर रोकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का। यह गीत सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोतो, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में कुछ जानकारियों के साथ हम फिर से अपने विषय की ओर बढ़ते हैं और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का उद्देश्य की बात करती है कि समाज के लिए लोक सेवा के महत्व और गुणों का सम्मान करना, विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करना, लोक सेवकों के कार्य को मान्यता देना और युवाओं को लोक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। वर्ष 2003 में पहले पुरस्कार समारोह के बाद संयुक्त राष्ट्र को दुनिया भर में लगातार अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे थे और लोक सेवा में उत्कृष्टता का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ये उन लोक सेवा संस्थानों की रचनात्मकता, उपलब्धियों, योगदान को पुरस्कृत करता है जो विश्वभर में देशों में अधिक प्रभावी और उत्तरदायी लोक प्रशासन को बढ़ावा देते हैं। तो श्रोताओ, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा फिर से रोकते हैं, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में कुछ स्थानीय जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। जल शक्ति विभाग के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने सोमवार देर सायं पेयजल तथा सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि विभाग का लक्ष्य हर घर और खेत तक प्राथमिकता के आधार पर जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है और विभागों के सतत प्रयास के फलस्वरूप प्रदेश में 66.52 करोड़ रुपए व्यय कर 134 जल आपूर्तियों में बिजली आपूर्ति तथा उपकरण संबंधी कार्य पूर्ति कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 140 करोड़ रुपए व्यय कर 45 योजनाओं को क्रियाशील किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के क्रियाशील होने से प्रदेश की बड़ी आबादी सीधे तौर पर लाभान्वित हुई है। तो श्रोता, थोड़ा सा हम कार्यक्रम में फिर से रुकते हैं और सुनते हैं इस गीत को।

तो इस प्यारे से गीत के बाद फिर से हम वापस आते हैं, क्योंकि अभी समय हमारे पास बाकी है और बातें भी, जानकारियां भी अभी आपके साथ साझा करनी है। तो श्रोताओं, अपनी बातों और जानकारियों के साथ हम फिर से वापस आते हैं और थोड़ी सी बात हम किताबों की कर लेते हैं। किताबें हमारे जीवन का ख़ास हिस्सा होती हैं। अगर इसे हम व्यवस्थित तरीके से ना रखें तो ये कबाड़ लगता है, और व्यवस्थित तरीके से लगे तो ये हमारे घर की शोभा को, यानी हमारे घर की दीवारों की शोभा को बढ़ा देती है। किताबें बचपन से हमारे साथ रहती हैं, किताबों से बहुत सारा ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं किताबों की बातचीत आपके साथ साझा। श्रोताओं, इंटरनेट के ज़माने में कई लोग ऐसे होते हैं जो किताबों को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किताबें हमारे बहुत बड़ी साथी होती है। किताबें पढ़ पढ़ कर आज हम इतने बड़े हुए हैं, और हमें से बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो किताबों पढ़ कर बड़े बड़े मुकाम पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं। तो थोड़ा सा अगर हम सोचें कि अरे इंटरनेट का ज़माना है, किताबें कौन पढ़ता है, लेकिन हमें से बहुत सारे लोग किताबों के शौकीन हैं जो किताबों को पढ़ते हैं, किताबें पढ़ना नहीं भूलते हैं। वे घर में स्टडी एरिया बनाते हैं ताकि पसंद की किताबों को खूबसूरत कलेक्शन जो है इकट्ठी कर सके। लेकिन अगर घर में जगह की कमी के कारण स्टडी एरिया बनाना संभव ना हो तो दीवारों का उपयोग हम कर सकते हैं, बाल बुक शेल्फ बनवा सकते हैं, और बाल बुक शेल्फ अपनी किताबों को व्यवस्थित करने और घर को खूबसूरत बनाने का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीका है। कॉर्नर बुक शेल्फ की बात करें तो आजकल कॉर्नर बुक शेल्फ बनाने का चलन जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि छोटे स्पेस का उचित ढंग से उपयोग भी हो जाता है, और इसके साथ साथ जो है कॉर्नर बुक शेल्फ किताबों को रखने के लिए आदर्श आइडिया है। ये ऐसी फैंसी शैलियों में आता है जिसे हम आसानी से किताबों को व्यवस्थित भी रख सकते हैं, और इसके साथ साथ अपनी इच्छा से अपनी पसंदीदा किताबों को भी पढ़ सकते हैं। तो श्रोताओं, किताबों को बड़े प्यार से रखिए, बड़े संभाल के रखिए, बहुत काम की होती है, बहुत सारा ज्ञान हमें देती है। जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं और अपने साथ साथ उस ज्ञान को हम अपने बच्चों को या फिर दूसरे अपने मित्रों को, अपने साथियों को, और भी बहुत सारा ज्ञान इधर उधर हम वितरित करते हैं। तो ज्ञान जो है जहाँ से मिल जाए उसे एकत्रित कर लीजिए, और कहते हैं अपना ज्ञान दूसरों को बांटने से वो हमारा ज्ञान जो है बढ़ जाता है। तो किताबी ज्ञान को ज़रूर बांटें और उसे खूब सारा इकट्ठा भी कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में किताबें हमारी अच्छी हमसफ़र होती हैं। तो किताबों के साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में करवाते हैं आप सभी का मनोरंजन, कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे बुक्स के बारे में, किताबों के बारे में, जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमारे साथी हैं। इन्हें सही तरीके से संभाल कर रखा जाए तो बहुत अच्छी लगती हैं, और इधर उधर व्यवस्थित तरीके से ना इन्हें रखा जाए तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो रीडिंग सर्कल की बात करें, ये गोलाकार लकड़ी का बना होता है, इसे दीवार पर लगाया जा सकता है और इससे अलग अलग खांचे या पार्ट बने होते हैं जिसमें हम किताबें रख सकते हैं। ये गोलाकार डिज़ाइन के बने बुकशेल्फ अनोखे डिज़ाइन के कारण कमरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। और इसके साथ साथ फ्लोटिंग की बात करें तो कम जगह पर फ्लोटिंग वॉल बुकशेल्फ बनाना सही फैसला रहता है। ये बुकशेल्फ देखने में अच्छे लगते हैं, जैसे बिना किसी सहारे खुद को पकड़े हुए होते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसकी फिटिंग जो है बहुत शानदार तरीके से की जाती है, जो देखने पर भी बहुत ही शोभा देते हैं, कमरे की शोभा को चार चांद लगा देते हैं। और साथ ही साथ अगर किताबें उस पर पड़ी हो तो और खूबसूरत दिखता है। अब थोड़ी सी बात हम कांच के बने बुकशेल्फ की बात करें तो आजकल कांच का बना वॉल बुकशेल्फ लोगों को बहुत पसंद आता है। यूँ कह सकते हैं कि हम लोगों की पहली पसंद है, क्योंकि ये देखने में काफ़ी आकर्षक और साथ ही साथ खूबसूरत भी लगता है। इसकी सफाई भी आसानी से की जा सकती है और किताबों पर धूल मिट्टी भी नहीं बैठती है। बुकशेल्फ अपने कमरे की लुक को पूरी तरह से बदल सकता है, और चाहे हम बुकशेल्फ के ऊपर LED लगाकर इसे रोशन भी कर सकते हैं। तो श्रोताओं, अपनी किताबें अपने प्यार से रखिए, और बहुत कुछ हमें देती है। हमारा करियर ही किताबों से बनता है, ज्ञान हम ढेर सारा उससे प्राप्त करते हैं, ज़िंदगी के सफ़र में जीना भी किताबें सिखाती हैं, और किताबें ना हो तो शायद हम जीना ही भूल जाएंगे। हम पहले के समय में आदि मानव के वैसे जैसे ही जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि शिक्षा इतनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि हम आज तक जो है समझने में ही समय बिताते जा रहे हैं। किताबों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। ज्ञान बेहद ज़रूरी है, जितना हो सके किताबों से ज्ञान एकत्रित कर ले। फ्री बैठे हों तो ज़रूरी नहीं पढ़े, क्योंकि अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल को पढ़ने से बहुत सारा दुष्प्रभाव भी हमारे आँखों पर पड़ता है। जब हम मोबाइल को देखते हैं, उसकी स्क्रीन को लगातार देखते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। किताबों को जितना पढ़ते रहे उतना ही हमें फ़ायदा भी देती है। तो श्रोताओं, किताबों का ज़रूर ज्ञान इकट्ठा करें। इसी के साथ साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापिस आते हैं और थोड़ी सी जानकारी और आपके साथ साझा कर लेते हैं। कांच से बने बुकशेल्फ की बात हमने कर ली, अब क्यों की बात करें। ये वॉल बुकशेल्फ देखने में अधिक व्यवस्थित होते हैं और दीवार पर आसानी से लगाए जा सकते हैं। इन्हें छोटी और बड़ी किताबों पर अलग अलग रखने के लिए अलग अलग क्यूब्स का चुनाव हम कर सकते हैं, चाहे तो त्रिभुज आकार के बुकशेल्फ को फिक्स कर दिया जाए। तो स्पाइन की बात करें, स्पाइन बुक शेल्फ भी कम जगह में आसानी से फिट हो जाते हैं। हम इसे दरवाजे के पास किसी दीवार पर या बरामदे की दीवार पर भी लगा सकते हैं। तो श्रोताओं, थोड़ा सा हम अपनी जानकारियों को देते हैं विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: अजी

0: श्रोताओ, इसी गीत के साथ कार्यक्रम में 7:45 हुए हैं, तो आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का किया आग्रह। वीबीजी रामजी योजना के पहलुओं का अध्ययन और सुझाव तैयार करने के लिए राज्य सरकार गठित करेगी उच्च स्तरीय समिति। सरकार के साथ वार्ता विफल रहने के बाद एचआरटीसी कर्मचारियों ने कल आधी रात से हड़ताल पर जाने का लिया फैसला। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की भावना पर बल देते हुए अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त आईएएस 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर भारत की यात्रा का नेतृत्व करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए विभागों में प्रभावी तालमेल जरूरी है। राज्य में वीबीजी रामजी योजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने और प्रदेश हितों के अनुरूप सुझाव तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। ये समिति 29 जून तक मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार योजना के कई प्रावधान राज्य और स्थानीय श्रमिकों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर वीबीजी रामजी योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी राज्यों को 30 जून तक नई योजना अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि नई योजना को अधिसूचित करने वाले राज्यों को ही बजट आवंटित किया जाएगा। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और सरकार के बीच आज हुई वार्ता विफल रही है। यूनियन ने शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ वित्तीय देनदारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इन पर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में यूनियन ने कल 24 जून को रात 12 बजे से प्रदेश व्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने बताया कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने तक सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी।
2: प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के ये हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और पैसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
1: इस बीच राज्य सरकार ने परिवहन निगम कर्मचारियों के हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग में अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी एस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जनता की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई, कानून व्यवस्था और जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी प्रदेश की लाइफलाइन है और चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
3: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में आज से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
1: दूसरी ओर पूर्व परिवहन मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता विक्रम ठाकुर ने पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों पर एस्मा लागू करने के निर्णय को कांग्रेस सरकार की तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार निगम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह विफल रही है और अब एस्मा के सहारे उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। बागवानी विभाग की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभाग को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ऑकलैंड सुरंग के समीप बहुमंजिला कार पार्किंग का लोकार्पण किया। करीब 7,60,00,000 रुपए की लागत से निर्मित इस परिसर में 145 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने शिमला से ओलंपिक मैराथन को हरी झंडी दिखाई। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
4: हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलों में अपना नाम कमाएं, धीरे धीरे खेल को अपने जीवन में अपनाएं। और हमने अभी पिछले दिनों स्पोर्ट्स में बहुत कुछ खर्च करने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में नदौन में बन रहा है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, उसमें तकरीबन 150 करोड़ की लागत से अभी अक्टूबर में बनकर पूरा हो जाएगा।
1: मुख्यमंत्री ने युवाओं से सरकार के नशा विरोधी अभियान का समर्थन करने और नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान भी किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं में रजोल, अनुही, जांगल, बग्गा सड़क और इसी मार्ग पर बनने वाला पुल शामिल है। उन्होंने अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों को निर्माण कार्य तय समय और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता व मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि आधुनिक हिमाचल के निर्माण में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने युवाओं और नेताओं से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने और प्रदेश के विकास में सहयोग देने का आह्वान किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक व महान राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर हमीरपुर जिले के बड़सर क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जिससे प्रत्येक देशवासी को प्रेरणा लेनी चाहिए। सिरमौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित शिवानी और उपाध्यक्ष पद के लिए बलदेव भंडारी को चुना गया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
5: ये पहला अवसर है सिरमौर जिला के इतिहास में जब 17 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आज सिरमौर जिला की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। सड़कों, पुलों, पानी की योजनाओं, अस्पतालों को बंद करने वाली सरकार, ताला लगाने वाली सरकार, बिजली पानी को महंगा करने वाली सरकार को सिरमौर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
1: वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने भी जिला परिषद चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भवा की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का किया आग्रह। VBG रामजी योजना के पहलुओं का अध्ययन और सुझाव तैयार करने के लिए राज्य सरकार गठित करेगी उच्च स्तरीय समिति। सरकार के साथ वार्ता विफल रहने के बाद HRTC कर्मचारियों ने कल आधी रात से हड़ताल पर जाने का लिया फैसला। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में ESMA लागू। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान का किया आह्वान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
6: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
7: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
6: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
7: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
6: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।
0: श्रोताओं, समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग धर्मशाला के अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो धर्मशाला।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए इतना ही मानते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है।

0: पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है।

आज के

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर अपने आधिकारिक निवास ओकओवर से ओलंपिक मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ सीटीओ पार्क से होते हुए इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल भी शिक्षा का एक स्वरूप है। जिस प्रकार विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार खिलाड़ियों को भी खेलों में उपलब्धियां हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला शहर में ऑकलैंड टनल के निकट नवनिर्मित बहुमंजिला कार पार्किंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पार्किंग सुविधा ऑकलैंड टनल क्षेत्र और उसके आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने, सड़क किनारे होने वाली पार्किंग की समस्या से छुटकारा पाने तथा वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अभिनव पहल करते हुए कानून बनाया है, जिसके तहत निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार इन बच्चों के अभिभावक की भूमिका निभा रही है। सरकार न केवल उनकी शिक्षा और पालन पोषण का पूरा खर्चा वहन कर रही है, बल्कि उन्हें जेब खर्च, भ्रमण और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है, ताकि उन्हें कभी ये महसूस न हो कि उनके माता पिता उनके साथ नहीं। वर्तमान राज्य सरकार इस पहल के अंतर्गत प्रदेश के इन बच्चों की 27 वर्ष की आयु तक शिक्षा, पालन पोषण और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। इसके अतिरिक्त उन्हें नीट और जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग तथा अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा रही है। अधीक्षक डाकघर धर्मशाला रविन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि भारतीय डाक विभाग द्वारा ग्राहकों की सुविधा हेतु दिनांक 22 जून से शाखा डाकघरों में ईकेवाईसी आधारित लेन देन की डिजिटल सुविधा मुहैया करवा दी है। अब आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से बचत खाते, आवर्ती खाते एवं सुकन्या समृद्धि खातों में निर्धारित सीमा तक बिना किसी दस्तावेजी औपचारिकता के 50,000 रुपए तक जमा और बचत बैंक खातों से 20,000 रुपए तक निकालने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पात्र खाताधारक किसी भी शाखा डाकघर से लेन देन कर सकेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के खाता धारकों को आसानी होगी। पश्चिम एशिया शांति समझौते की घोषणा के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। इससे सरकारी तेल कंपनियों को होने वाला घाटा काफी कम हो चुका है और अब इनके लाभ में सुधार होने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी रिफाइनरियों और खुदरा ईंधन विक्रेताओं के पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर संयुक्त मार्जिन अब हाल के पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले के स्तर से ऊपर है। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके लंबित पेंशन एरियर का 100% भुगतान जुलाई में करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा सोमवार को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को संशोधित पेंशन के शेष सभी बकाया का भुगतान अगले महीने कर दिया जाएगा। बागवानी विभाग में 450 पद भरने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वीकृति प्रदान की है। इनमें 50 बागवानी विकास अधिकारी सुखविंदर सुक्खू, 100 बागवानी जागरण अकाई विस्तार अधिकारी और 300 मल्टीटास्क कर्मियों के पद शामिल हैं। इन पदों को अंतिम स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में रखा जाएगा। सरकारी डिपो से सब्सिडी पर मिलने वाले सरसों के तेल के लिए उपभोक्ताओं को इस महीने भी इंतजार करना पड़ सकता है। संभावना है कि जून के अंतिम दिनों में डिपो तक तेल पहुँचना शुरू हो जाएगा। डिपो में मिलने वाले सरसों के तेल अब 160 रुपए प्रति पैकेट मिलेगा, जिसमें लगभग 7 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पर्यटन नगरी धर्मशाला से अब रियल एस्टेट सेक्टर की निगरानी और शिकायत निवारण की प्रक्रिया का पूरा नियंत्रण किया जाएगा। सोमवार को नगर निगम धर्मशाला के पुराने कार्यालय में रियल एस्टेट
गीतांजलि का कन्नड़, तेलुगु और मलयालम समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद शुरू किया है। ये पहल संस्थान के टैगोर अध्ययन केंद्र के माध्यम से की जा रही है। इस पहल से नई पीढ़ी भी गुरुदेव के प्रवचनों से रूबरू होगी। इसका उद्देश्य टैगोर के साहित्य और विचारों को देश के व्यापक पाठक वर्ग तक पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के अवसर पर आज शिमला के रिज पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने राज्य के विकास में वीरभद्र सिंह के योगदान को स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के एक महान नेता थे, जिन्होंने 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दी। उन्होंने प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज हम उनके अमूल्य योगदान को स्मरण कर रहे हैं। प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों में जुलाई महीने में फिर से प्रदेश के लाखों एपीएल उपभोक्ताओं को 12 किलो आटा ही मिलेगा। केंद्र की ओर से एपीएल उपभोक्ताओं के आटे में पिछले 5 महीने से लगातार कटौती की जा रही है। इस दौरान ट्राइबल क्षेत्रों में सप्लाई भेजने के नाम पर कटौती होने का हवाला दिया जा रहा है। इसी के साथ आज

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे?
4: चलिए एक प्लान बनाते हैं,
3: ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
3: अरे मरी क्या।
4: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
3: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
4: फोटो पर? मेरा बाप तो जिंदा है।
3: तिलक साहब जिंदा है?
4: तिलक?
3: हाँ।
4: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
3: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
4: मुझे माफ कर दीजिए।
3: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
4: रोड किसी के बाप का नहीं है।
3: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
5: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
6: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
5: या आपको एक फोन आएगा।
7: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
5: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
7: चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
6: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
7: रिसीव करते वक्त नहीं।
6: तो याद रहे,
8: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
9: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
10: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
9: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
10: आप चिंता ना करें।
9: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूसरे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
10: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
11: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
10: तुम क्या खड़ा हो?
11: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
4: ले जाए पक्का?
11: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
12: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
13: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
14: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
13: हाँ बोलो।
14: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे हुए।
13: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
14: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
15: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

92.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
3: अरे मरी क्या।
4: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
3: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया।
4: फोटो पर? मेरा बाप तो जिंदा है।
3: तिलक साहब जिंदा है?
4: तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
3: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
4: मुझे माफ कर दीजिए।
3: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
4: रोड किसी के बाप का नहीं है।
3: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
5: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
6: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
5: या आपको एक फोन आएगा।
7: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
5: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
7: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
6: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
7: रिसीव करते वक्त नहीं।
6: तो याद रहे,
8: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
9: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
10: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
9: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
10: आप चिंता ना करें।
9: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
10: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
11: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
9: तुम क्या खड़ा हो?
11: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
12: ले जाए पक्का?
11: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
13: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
15: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
14: हाँ बोलो।
15: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे हो।
14: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
15: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
16: गजब बेइज्जती है।

0: नाम और मैसेज एक बीच के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूं तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन, प्लीज गिव मी अ चांस, प्लीज सिमरन प्लीज।

0: कह दो ना
1: क्या
0: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: आई लव यू।
2: यहाँ

0: धीरे हाले हाले हाले हाले धीरे धीरे दिल को मिली है मंजिल।
1: भीगी भीगी रात में प्यारी प्यारी बात में खोया खोया रहता है दिल।
0: रुक रुक रुक रुक

पर है। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख तो बच्चा मर जाओ।

आवाज बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

1.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्म।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।